आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 5:30 और 47 सेकेंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फिरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आप सुन रहे हैं अपने दिन की पहली खूबसूरत दस्तक भोर सुहानी, जहाँ हर सुबह एक नई उम्मीद, एक नया ख्वाब और जिंदगी को बेहतर बनाने का एक नया मौका लेकर आती है। दोस्तों, कहते हैं कि सुबह सिर्फ सूरज के निकलने का नाम नहीं बल्कि अपने भीतर की रोशनी को पहचानने का भी नाम है। बीते हुए कल की परेशानियों को अलविदा कहिए, दिल में सुकून रखिए और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान सजाइए। याद रखिए, जिंदगी में कामयाबी हमेशा बड़े कदमों से नहीं मिलती, कभी कभी छोटे छोटे प्रयास भी हमें मंजिल के बेहद करीब लेकर जाते हैं। इसीलिए अपने बीते हुए कल को याद करते हुए आने वाले कल को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। मुस्कुराइए, हंसिए और जिंदगी को आगे बढ़ाइए। और इसी खूबसूरत एहसास को आवाज देता है एक बहुत ही प्यारा नगमा, धीरे धीरे सुबह हुई, जिसमें परिंदों की चहचहाहट ये बता रही है कि सुबह हो गई है, जल्दी से जग जाइए और एक नए सफर का आगाज कीजिए हमारे साथ। तो आइए इस नगमे के साथ अपने दिल का आगाज करते हैं मोहब्बत और सकारात्मक सोच से। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ, धीरे धीरे सुबह भी हो चुकी है और एक नई सुबह में आप अपना कदम भी बढ़ा चुके हैं। एक नए दिन का आगाज, एक नई शुरुआत, एक नई सुबह, एक नया दिन और जिंदगी को खूबसूरत बनाने का एक नया मौका। कहते हैं सुबह की पहली किरण सिर्फ अंधेरा ही नहीं मिटाती बल्कि हमारे दिल में उम्मीद का एक नया चिराग भी जलाती है। जिंदगी की असली खूबसूरती दौलत या शोहरत में नहीं बल्कि हमारे दिल में बसे प्यार, अपनापन और इंसानियत में है। एक मीठी सी मुस्कान, प्यार भरे दो बोल और किसी के लिए की गई छोटी सी नेकी किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, नफरत को नहीं मोहब्बत को चुनेंगे, शिकायतों को नहीं शुक्रगुजारी से अपनाएंगे, क्योंकि जब दिल में प्यार होता है तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। और इसी प्यार भरे एहसास को सलाम करता है फिल्म संगम का ये सदाबहार नगमा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, जिसे बेहद खूबसूरत आवाज से सजाया है मुकेश साहब ने, लता जी ने और महेंद्र कपूर साहब ने।

हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा भोर सुहानी की। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी बहुत छोटी है। हम अक्सर दौलत, शोहरत और कामयाबी की तलाश में इतने मशगूल हो जाते हैं कि अपनों के साथ बिताए जाने वाले छोटे छोटे लम्हों की अहमियत भूल जाते हैं। याद रखिए, आखिर में हमारे पास क्या था, उससे ज्यादा मायने ये रखता है कि हमने अपनी जिंदगी में कितना प्यार बांटा और कितने दिलों में अपनी जगह बनाई। इसी गहरी हकीकत को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान करता है फिल्म धर्म करम का ये सदाबहार नगमा, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जिसे अपनी बेहद खूबसूरत आवाज से सजाया है मुकेश साहब ने। तो आइए सुनते हैं।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। पश्चिम बंगालस्य नंदीग्राम रेजीनगर विधानसभासनयोः भाजपेति दलेन बृहत्मत व्याप्त्या विजयः समधिगतः। तथैव असम राज्यस्य सामरिक दृष्ट्या महत्वपूर्णे नगांव लोकसभासने भाजपा प्रत्याशी देवाशीष शर्मा विजयी जातः। तमिलनाडु राज्ये मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलग वेत्री कशगम टीवीके इति दलेन धारापुरम तथा मधुरांतकम इति द्वे अपि विधानसभा

0: प्रभासने विजित्य नूतनः कीर्तिमानः स्थापितः। अपरञ्च पुदुचेरी राज्यस्य थट्टनचावडी आसने एआईएनआरसी दलं स्वकीयं आसनं सुरक्षितं कृतवत्। उपनिर्वाचन परिणामेषु भाजपा एनडीए गठबंधनस्य प्रचण्डं विजयं प्रशंसयन् प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी अवोचत् यत् एषः जनादेशः सुशासन नीतौ देशवासीनाम् अगाध विश्वासं प्रकटीकरोति। अस्मिन् निर्वाचन चक्रे पश्चिम बंगालस्य नंदीग्राम रेजीनगर आसनयोः असमस्य नगांव संसदीय क्षेत्रे च भाजपा दलेन, तमिलनाडु राज्ये तमिल अगवेत्री कशगम दलेन च ऐतिहासिकः विजयः प्राप्तः। लोक सुरक्षा चिन्तनात् पूर्व नियम निषेधाच्च दिल्ली आरक्षी संस्थया जंतर मंतर क्षेत्रे प्रस्तावितस्य प्रदर्शनस्य अनुमतिः नैव प्रदत्ता। महानगर्यां दिल्ल्यां सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तं कठोरा वर्तते। पञ्चचत्वारिंशत् मेट्रो स्थानकानि च पिहितानि सन्ति। राष्ट्रीय राजधान्यां शान्ति व्यवस्थायाः रक्षार्थं दिल्ली आरक्षी प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् विहितानां समयानाम् अभावात् जंतर मंतर क्षेत्रे प्रदर्शनस्य अनुमतिः प्रदातुं न शक्यते। क्षेत्रेऽस्मिन् भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितायाः त्रिषष्ट्युत्तरैकशत नियमानुसारं निषेधाज्ञा प्रवृत्ता वर्तते। सुरक्षा कारणात् दिल्ली मेट्रो रेल विभागेन राजीव चौक केन्द्रीय सचिवालयं समेत्य पञ्चचत्वारिंशत् मेट्रो स्थानकानि पिहितानि। यातायात नियन्त्रण विभागेनापि मार्ग परिवर्तनस्य मार्गदर्शिका प्रकाशिता अस्ति। प्रशासनेन नागरिकान् प्रति सुगम गमनाय अग्रिम मार्ग निर्धारणस्य परामर्शः प्रकल्पितः। नवदिल्ल्यां महिला बाल विकास मंत्रालयस्य राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रे भाषणं कुर्वन् प्रधानमंत्री श्रीनरेन्द्रमोदी किशोरीनां स्वास्थ्याय पोषणाय सर्वांगीण विकासाय च विशेष ध्यानं दातुं समाहूतवान्। जनसहभागिता भावनावर्धनाय प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् आंगनवाड़ी केन्द्राणि केवलं प्रशासनिक संस्थाः न भूत्वा सामाजिक सहयोगस्य जीवन्त केन्द्राणि भवेयुः। साक्षात्कारात् परं वार्ताहरान् सम्बोधयन् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे प्रोक्तवान् यत् विपक्ष नेतारः विशेष गहन संशोधन एसआईआर इत्यस्य प्रक्रियायाः कथित विसंगतीनां विषये राष्ट्रपति महोदयां ज्ञापितवन्तः। तैरपि निर्वाचन यंत्राणां ईवीएम प्रयोगं समाप्य मतपत्रैः एव निर्वाचन संपादनस्य याचना विहिता। मतदात्री सूच्यां सामूहिक अपत्तीनां रोधनाय निर्वाचन आयोगेन प्रपत्र सप्त आवेदनस्य सीमा निर्धारिता। निर्वाचन आयोगेन सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः प्रति प्रेषित पत्रे स्पष्टीकृतं यत् प्रस्तावित आपत्ति अवधौ एकेन मतदात्रा अधिकमतेन 10 प्रपत्राणि एव प्रस्तौतुं शक्यन्ते। तथैव सतत नवीनीकरण काले प्रतिमासं केवलं 5 आवेदनानि स्वीक्रियन्ते। रांचीनगरे द्वितीय T20 प्रतिस्पर्धायां वेस्टइंडीज दलेन भारतं 6 कन्दुकावपातैः विजित्य श्रृंखला 1-1 इति समाकृता। तृतीया स्पर्धा श्वः इन्दौरनगरे भविष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी तिरुवनन्तपुरम्, आलपुरा, आलपुरा एफ़एम्, कायंकुलम एफ़एम्, पत्तनंतिट्टा एफ़एम्, कवरत्ति।

0: ഇന്നത്തെ പുലർവെട്ടത്തിന് ഇങ്ങനെ സമാപനം. ശുഭദിനാശംസകൾ. സമയം 7 മണി കഴിഞ്ഞ 59 മിനിറ്റും 52 സെക്കൻഡും. ഇനി 8 മണിക്ക് സമാചർ പ്രഭാത്, തുടർന്ന് 8:15 മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ഡൽഹി റിലേ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद किया गया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल। अमेरिका ने वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में अगले वर्ष अप्रैल तक ढील दी। ये फैसला ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच लिया गया। खेलों में पुतुल सोनवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया। और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी सामुदायिक, प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन न करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर आज प्रवेश और निकास बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है।
3: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन है, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
2: वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुर स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेवी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेवी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेवी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंपियंस अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है।
2: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रोक्सीमेटली 60% अधिक है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव तथा रिटर्निंग अधिकारी अजित वर्मा ने इसकी पुष्टि की।
3: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और देश के विकास में योगदान देंगे। समाजवादी पार्टी के 10वीं सीट के लिए तीसरा उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद ही ये तय हो गया था कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उनकी राज्यसभा सीट भी खाली हो गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा वेट्री कशगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। श्री मोदी ने विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी है और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प और जनसेवा के मंत्र के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह ये दृष्टिकोण धरातल पर साकार हो रहा है। इसी कड़ी में बात होगी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित संग्रहालयों और गौरव दिवस की।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। विजन के तहत रांची की पुरानी केंद्रीय जेल में 142 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ने देश में एक नई चेतना जगाई है। आदिवासियों के आत्म सम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनजातीय समाज के योगदान के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है।
5: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
4: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्वजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है।
6: आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
4: वहीं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि खूंटी जिले में भी जनजातीय नायकों के सम्मान और जन सेवा की योजनाओं का व्यापक असर देखा जा सकता है। ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र रहे इस जिले में अब सुदूर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा कहते हैं,

0: हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
1: बिरसा मुंडा गांव गांव संगठन बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके लोगों के साथ समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपना दयांकल जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
0: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम किरकेट्टा।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेनदेन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।
3: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
4: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
3: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
4: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
3: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद कनकलता। जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी, अनुमति नहीं मिली तो प्रदर्शन अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम को अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर नागरिकों को लिखे गए खुले पत्र की चर्चा करते हुए लिखा, खाकी वर्दी वाले भी इंसान है जिसका अपना परिवार, अपने लोग, फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश रही भारतीय मूल की नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi calls for greater focus on health, nutrition and overall development of adolescent girls. Chairs valedictory session of National Departmental Summit on Women and Child Development. Delhi Police denies permission for proposed protests at Jantar Mantar in National Capital today. Tightens security across National Capital. Delhi Metro shuts entry and exit at 45 stations. All 10 candidates from Uttar Pradesh, including 8 from the BJP and 2 from Samajwadi Party, elected unopposed to Rajya Sabha. US lifts sanctions on sale of Russian diesel in global markets until April next year amid unprecedented price surge. In sports, Putul Sonowal assures country's first ever medal at World Bowls Champion of Champions after reaching semi-finals in Australia. And in men's cricket, West Indies beat India by 6 wickets in the second T20 international to level 5-match series 1-1. Prime Minister Narendra Modi has called for greater focus on the health, nutrition and overall development of adolescent girls. The Prime Minister made the remarks while chairing the valedictory session of the 2-day National Departmental Summit on Women and Child Development.

0: आइए सुनते हैं स्पेशल सीरीज जनसेवा से देश सेवा की 23वीं कड़ी का पुनः प्रसारण। 9:11 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल।
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 23वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। इसमें भाग ले रही हैं भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और राजनीतिक विश्लेषक रवि पराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच चिनाब नदी के उफनते पानी से 359 मीटर ऊपर टिकी एक विशाल फौलादी मेहराब का, जहां कभी पहुंचना महज एक सपना था, वहां आज भारत की तरक्की की ट्रेन फर्राटा भर रही है। सोचिए पंबन के नीले समुद्र पर खड़े उस पुल के बारे में, जो जहाजों को रास्ता देने के लिए समुद्र के सीने पर किसी विशाल पंख की तरह हवा में ऊपर उठ जाता है, या कच्छ के रण से लेकर कन्याकुमारी तक फैले उन चमचमाते एक्सप्रेसवे का, जिन्होंने दूरियों को सिर्फ किलोमीटरों में नहीं वक्त के पैमाने में भी आधा कर दिया है। ये केवल कंक्रीट, क्रेन और स्टील की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस अदम्य इच्छा शक्ति की, जिसने चुनौतियों को संभावनाओं

0: बदला, जिसने भारत के भूगोल को एक नए भारत के भविष्य से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम रुख कर रहे हैं एक ऐसी ही बदलाव की कहानी की ओर। प्रस्तुत है विशेष अंक, बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार।
1: ये फ्रेट कॉरिडोर माल गाड़ियों के लिए बिछाई गई स्पेशल पटरियां है। इससे उत्तर भारत की बंगाल और गुजरात के समंदर से कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है और दादरी वो स्थान है जहां ये दोनों कॉरिडोर आपस में मिलते हैं, यानी यहां किसान जो उगाते हैं, यहां उद्योग जो कुछ बनाते हैं, वो जमीन से हवाई मार्ग से दुनिया के कोने कोने तक तेजी से जा पाएगा।
0: श्रोताओं, जब किसी राष्ट्र के महान बनने की गाथा लिखी जाती है तो उसकी न्यू में उसकी रीढ़ यानी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। पिछले वर्षों में भारत ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जो गति, पैमाना और इंजीनियरिंग का चमत्कार देखा है, उसने न केवल देश की कनेक्टिविटी बदली है बल्कि हर नागरिक की आकांक्षाओं को नए पंख दिए हैं। इसी अभूतपूर्व कायाकल्प और इसके दूरगामी प्रभावों को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर नीति को दिशा देने वाले पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी और इस पूरे विजन के सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत प्रभावों के विश्लेषक, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार रवि पाराशर जी। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। धन्यवाद आनंद
0: जी। मिश्र जी, आपके साथ शुरू करते हैं। और पिछले करीब एक दशक में भारत ने सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स, हर क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव देखा है। आपसे समझना चाहते हैं कि क्या ये बदलाव सिर्फ इतना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्केल बढ़ा है या प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का तरीका भी बदला है? खासकर पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के जरिए क्या अब इन अलग अलग प्रोजेक्ट्स को एक दूसरे से जोड़कर एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क की तरह देखने की सोच बन रही है?
2: बिल्कुल आनंद जी, आपने सही कहा कि पहले हमारे लिए रोड रोड थी, रेल रेल थी, या हवाई अड्डे थे जहाँ पे कुछ पैसेंजर जाते थे, कुछ गाड़ियां चलती थी, कहीं पे अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन पिछले 10-12 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नई सोच, जो शहरों को जोड़ करके, स्थानों को जोड़ करके, लोगों की मोबिलिटी को करके, फ्रीट के मूवमेंट को, अनेकल केवल मूवमेंट ही नहीं बल्कि उसको कितने सस्ते अफोर्डेबल तरीके से उसको कर सकते हैं, कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, तो ये एक ऐसा नया व्यवस्था बनाया है पिछले 10-12 सालों में कि पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सारी की सारी बुनियादी सुविधाएं एक नए स्वरूप ले रही हैं। और वो स्वरूप है हमारा विकसित भारत, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 आजादी का 100वीं सदी मना रहे होंगे, 100वीं वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हमारा देश जो विकसित होगा उसके लिए पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, एयरपोर्ट में ले लीजिए, जिस प्रकार से एयरपोर्ट की संख्या आज दूने से ज्यादा हो गई है, और केवल एयरपोर्ट की संख्या नहीं बढ़ी है बल्कि एयरपोर्ट पे चलने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। एक साधारण सा आदमी जो कि कभी सोच नहीं सकता था, वो उड़ान इस योजना के तहत अब उसको कहीं से कहीं, देश में लगभग 95 ऐसे एयरपोर्ट है जहां पे उड़ान योजना के अंतर्गत वो चल के जा सकता है। तो उसको एक नई चीज, आप कभी एयरपोर्ट पे जाइए तो देखिए, देख करके लगता है कि ये क्या है, ये नया भारत है। आप रेलवे को देख लीजिए, रेलवे में जिस प्रकार से न केवल हमारी जितनी डबल ट्रैक उसको बनाया गया बल्कि लगभग 99% से ज्यादा, ऑलमोस्ट लाइक 100% ये सारा सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया और उसमें स्पीड पे ध्यान दिया गया। आज काफी करीब 80% ट्रैक हमारे ऐसे जिसके ऊपर 110 किलोमीटर की रफ्तार से रेल चल सकती है, तो स्पीड पे ध्यान दिया गया, सुरक्षा पे ध्यान दिया गया, पीपल्स कन्वीनियंस जो हम कभी सोचते नहीं थे, चाहे शौचालय से लेकर के आपको पावर पॉइंट प्लग जिससे कि आप अपना मोबाइल को चार्ज कर सके, आपके जो है खाने पीने की सुविधा हो सके, सारी की सारी हर तरह से, और स्पीड तो है ही, अफोर्डेबिलिटी, जैसे आनंद हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें चली अफोर्डेबिलिटी के ऊपर उस पर ध्यान दिया गया, तो वंदे भारत ट्रेनें चली जिसको स्पीड के ऊपर ध्यान दिया गया, एक अमूल चूल परिवर्तन पूरा का पूरा, या फ्रीट कॉरिडोर में ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, तो मुझे लगता है कि पूरी सोच में बदलाव आया। आप मेट्रो का नेटवर्क का देख लीजिए, जो मेट्रो कभी थोड़े से शहरों में हुआ करता था, हम इस पर बाद में विस्तार में बात करेंगे, तो छोटे शहर में जो करके आज हमारे लगभग 30 शहरों में मेट्रो चल रही है और तमाम सारे शहरों में चल रही है। पहले बार हमारे देश में रैपिड रीजनल ट्रेन की जो शुरुआत हुई है, जो नमो भारत के नाम से जो पहली शुरुआत हुई,

0: जो 91,287 किलोमीटर था वो बढ़कर लगभग 1,46,572 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। फोर लेन हाईवेज की संख्या बढ़कर लगभग 45,000 किलोमीटर तक पहुंच गई है। आपसे ये समझना चाहते हैं कि 2014 के बाद से जो ये परिवर्तन हुआ है आम नागरिक के जीवन में, ये जो आंकड़े हैं बढ़े हुए, इनका वास्तविक मतलब क्या है और देश की प्रगति में इनके क्या मायने हैं?
1: आनंद जी, राष्ट्रीय राजमार्गों का जिस तरह से विकास हो रहा है, न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, तो जाहिर है कि इससे आम आदमी के दैनिक रोजमर्रा के जनजीवन पर काफी सकारात्मक असर पड़ा है। दूरियां घटी हैं, कनेक्टिविटी बढ़ने से बहुत सारी चीजें हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से फसल को अच्छी मंडियों तक लाना ले जाना, इलाज के लिए अच्छे अस्पतालों तक पहुंच बढ़ना और बहुत सारे स्तरों पर अगर हम देखें तो, जैसा आपने कहा कि देश में सड़कों का जाल एक तरह से बिछ रहा है और जो आपने आंकड़ा बताया कि 2014 में जो भी प्रतिदिन सड़क निर्माण का आंकड़ा था वो अब बढ़कर 28 से 30 किलोमीटर रोज हो गया है, उल्लेखनीय वृद्धि है। 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग थे देश में, उनकी कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी। अभी 2025-26 में ये आंकड़ा 1,46,572 किलोमीटर तक पहुंच गया है। ये करीब परसेंटेज में देखें तो ये 61% बढ़ोतरी है। ये अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है किसी भी सरकार के लिए। गति शक्ति मास्टर प्लान
0: जी,
1: इसका उल्लेख करना हमें यहाँ पर बहुत आवश्यक है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम गति शक्ति योजना में सड़क, रेल और दूसरे ट्रांसपोर्ट, जैसे दुर्गा शंकर जी ने कहा, साधनों को, सारे जो यातायात के साधन है उनको एकीकृत किया गया है और इसका बहुत बड़ा फायदा अलग अलग सेक्टर्स को बिल्कुल मिला है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात आई है, देश के चारों कोनों में हर जगह एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, उनसे दूरियां बहुत घट गई हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है ये। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई 1,350 किलोमीटर है और दिल्ली से मुंबई जाएं या मुंबई से दिल्ली के बीच हम एक्सप्रेसवे के जरिए सफर करें बाय रोड तो 24 घंटे की बजाय 12 घंटे में ये सफर संभव है। अब ये कितना बड़ा अंतर है, जो यात्रा आप 24 घंटे में कर पाते थे वो अब करीब करीब आधे समय में आप कर सकते हैं, तो न केवल समय की बचत है बल्कि ऊर्जा की भी बचत है। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो इंजीनियरिंग के, भारतीय इंजीनियरिंग के जो अद्भुत चमत्कार हैं वो भी आप देखेंगे। इसी दौरान कुछ प्रोजेक्ट जो है संभव हुए, तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला एक ब्रिज है जो अंग्रेजों के शासन काल में 1914 में शुरू हुआ था उसका बनना, और करीब करीब इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर है। जंग लगने की वजह से और कुछ पुराना पड़ने की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। अब जो नया पंबन ब्रिज बना है वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। अटल सेतु की बात कर ले, इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है और ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। दक्षिण मुंबई के सेवरी को नवी मुंबई से जोड़ता है ये। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। जो समुद्र पर इसका हिस्सा बना है उसकी लंबाई 16.5 किलोमीटर है और जमीन पर इसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर है। ये 6 लेन का अटल सेतु है। मुंबई से नवी मुंबई तक 20 मिनट में इसके जरिए जो यात्रा करते हैं इसके माध्यम से, उसमें केवल अब आजकल 20 मिनट लगते हैं, पहले घंटों लगते थे क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत लंबे लंबे लगते थे और इसकी लागत थी 17,840 करोड़ रुपए। इसी तरह सुदर्शन सेतु को ले, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है ये। गुजरात के द्वारका जिले में अरब सागर पर ये सुदर्शन सेतु स्थित है। ओखा को बेठ द्वारका से ये जोड़ता है। इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। लागत आई थी करीब 979 करोड़ रुपए। ये 4 लेन का पुल है और दोनों किनारों पर लोगों की सुविधा के लिए 2.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ है जिस पर वो चहलकदमी भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में सड़क कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी पर बहुत ध्यान दिया गया है और इसका लाभ बहुत सारे सेक्टरों को मिल रहा है।
0: मिश्रा जी, अगर सड़क से सफर को आगे बढ़ाएं और रेल की तरफ चलें, जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जिक्र भी किया अमृत भारत स्टेशन का, तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है। साथ ही साथ नमो भारत और वंदे भारत जो ट्रेनें चली हैं उससे यात्रा समय में तकरीबन 30-40% की समय की कमी आई है, जो आप स्पीड की भी बात कर रहे थे। सवाल यह है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने और देश की जीडीपी में इस आधुनिक कनेक्टिविटी का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं?
2: आनंद जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन

0: इसके पहले इसको बात करूं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जो
1: जी
0: पराशर जी बोल रहे थे। देखिए, पहले दिल्ली से मैं रहने वाला हूं, पूर्वांचल का। दिल्ली से अगर आपको बलिया या आजमगढ़ जाना हो तो बहुत टाइम लगता था। समझिए कि पूरा दिन भर आपको नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 20-22 घंटे लग जाते थे। और आज आप दिल्ली से लेके लखनऊ तक एक्सप्रेसवे है जो कि मुश्किल से 5 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं, और वहां से अगले 3 साढ़े 3 घंटे में 4 घंटे में आप हो जाते हैं। जो दूरी हम लगाते थे 20-20 घंटे लगा देते थे, वो हम 9 घंटे के भीतर भीतर वहां पहुंच जाते हैं। उसका क्या नतीजा निकला? आज जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था, तो पहले पूर्वांचल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वहां कोई सामान ले जाना अपने आप में बहुत दूर हुआ करता था। आज पूर्वांचल में तमाम सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, बुंदेलखंड में काफी सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को इस प्रकार से कनेक्टिविटी जोड़ा है, हाईवे के, नेशनल हाईवे के माध्यम से, एक्सप्रेसवे के माध्यम से, या तमाम सारे इंजीनियरिंग मार्वल जिसका भी जिक्र कर रहे थे, जैसे अटल सेतु की बात कर रहे थे, अटल सेतु में उसको सेतु नहीं लेता हूं मैं, उसको समझता हूं कि दो इकोनॉमिक सेंटर, दो ग्रोथ सेंटर, एक तरफ तो मुंबई है, दूसरे नवी मुंबई है, या आगे चलिए पूना का देख लीजिए, इन दोनों के बीच की दूरी को कम करके उसने एक बिल्कुल नया चीज ला दिया। मैंने आर्थिक विकास के लिए जो हम जब, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक हमारा ये पाई, इकोनॉमिक पाई बढ़ेगा नहीं, तब तक हमारे देश के लोगों की समृद्धि, लोगों के जीवन की जो स्तर में, उसमें सुधार नहीं हो। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा काम हमारा एक्सप्रेसवे, हाईवेज और इसके माध्यम से भारत सरकार कर रही है, और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राज्य सरकार भी इसके ऊपर काफी सारा, आज महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमाम सारे जगह इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अब आपका जहां तक रेल का सवाल है, रेलवे देखिए कि पिछले 10-12 साल में टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक उनका एक संदेश है कि पहले चीजों को स्केल अप करिए, पहले चीजों को नई टेक्नोलॉजी को लाइए, फिर स्पीड अप करिए, और फिर स्केल, बड़े ऐसे स्केल जो कि संभव न हो, तो स्किल, स्पीड एंड देन स्केल। तो आज देखिए कि जिस प्रकार से रेलवे का ट्रैक हमारा लगभग 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया, रेलवे जो नए ट्रैक बने हैं, पिछले जो अगर हम देख रहे थे, जो एक मैं डाटा देख रहा था, जो पिछले 10 साल में बना थे उससे दूने से ज्यादा जो पिछले 10 साल में बना, यानी उस रफ्तार से बना। और उसमें रेल में वंदे भारत से जो चला, वंदे भारत से इतना सारा जो जुड़ रहा है, बहुत हाई स्पीड। और सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है, ये हमारा आत्मनिर्भर भारत है। इसकी जो वंदे भारत की जो ट्रेन है, वो हम विदेशों से, पहले तुम इस तरह की चीजें विदेशों से लाते थे, कितना हमारा पैसा खर्च होता था, कितना हमारा फॉरन एक्सचेंज लगता था, आज सब कुछ चीजें हमारे देश बन रही है। न केवल हमारे जो कोचेज बन रहे हैं, बल्कि हमारी पूरी टेक्नोलॉजी, चाहे कम्युनिकेशन सिस्टम हो, या सारा का सारा चीज हमारे यहाँ पे बन रहा है। अब एक तरफ तो हमने स्पीड लाई, दूसरे तरफ हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जगह जगह अपनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अफोर्डेबल ट्रेन, अफोर्डेबल, कंफर्टेबल, स्पीड भी और सारी फैसिलिटीज भी, सिक्योरिटी के लिए जो कवच ऑटोमेटिक सिस्टम, जो हमारा जो कवच का जो सिस्टम है, आज तेजी से कवच का पूरा पूरा प्रसार हो रहा है
1: जी।
0: अब ट्रेन का तो एक तो डिस्टेंस हो रहा है, अगर आप देखेंगे शहरों के भीतर एक जो नेटवर्क होता है मेट्रो का, अब मेट्रो नेटवर्क हम 2014 में तकरीबन 5 शहर में 250 किलोमीटर भी नहीं था, आज करीब 1150 किलोमीटर मेट्रो हमारे 26 शहरों में चल रहा है, और जो काम चल रहा अनदर 100,000 किलोमीटर पर काम चल रहा है, और लगभग हम पूरी तरह से इसमें आत्मनिर्भर हो चुके हैं। मैं तो उस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रहा हूं, जिस प्रकार से आज हम मेट्रो कोचेज जो ले रहे हैं, सारे के सारे हिंदुस्तान में बन रहे हैं। हम विदेशों में अपने कोचेज, यहाँ के हिंदुस्तान के बने कोचेज विदेशों में, मुझे बड़ी खुशी होती थी कि जब कोई हमारे पास एक ट्वीट करता था, ब्रिस्बेन से ट्वीट कर रहा है, कोई जोहान्सबर्ग से कर रहा है, कोई कनाडा के शहर से कर रहा है, कि हम आज मेड इन इंडिया कोच में बैठे हुए, तो हम पूरी टेक्नोलॉजी को आत्मनिर्भर कर रहे हैं। और जो पहला जो हमारा एक, पहले तो हम ये मेट्रो को लेकर के इतने सारे शहरों के भीतर कनेक्टिविटी किए, अब शहरों से शहरों के बीच में
1: जी,
0: जैसे दिल्ली से मेरठ के बीच में जो हमारा नमो भारत, अब 82-83 किलोमीटर की दूरी करीब 15 स्टेशनों पर रुकते हुए आप केवल 55 मिनट में कर लेते, कहां 3 घंटे पहले लगते थे, 55 मिनट में कर सकते हैं। और इससे उसका क्या फायदा हुआ, आज उसके बीच तमाम सारे ग्रोथ सेंटर बनने चालू हो गए, तमाम सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी पूरा का पूरा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, वो सोच कनेक्टिविटी तो एक बेसिस है, लेकिन कनेक्टिविटी के आधार पर आर्थिक उन्नयन
1: जी,
0: कैसे लोगों की, हम अपने बिजनेस की, मैन्युफैक्चरिंग की, लोगों की अदर एक्टिविटी को बढ़ा करके कैसे लोगों का जीवन का स्तर को सुधार करें।
1: बिल्कुल ठीक बात है। रेल की चर्चा को थोड़ा रवि जी आपकी तरफ मोड़ते हैं, और दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज की बात करें, या देश के पहले केबल स्टेड अंजी खड ब्रिज और भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण की बात करें, यह सिविल इंजीनियरिंग की उपलब्धि तो है ही, साथ ही यह सामरिक और भौगोलिक दुर्गमताओं पर भारत की तकनीकी विजय है। आपसे समझना चाहते हैं कि ऐसे कठिन प्रोजेक्ट्स में इंजीनियरिंग विल पार और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की गति को किस तरह साधा गया और इससे देश में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला।
2: देखिए आनंद जी, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी योजना परियोजना हो, इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो वो पूरी नहीं हो सकती। अभी दुर्गा शंकर जी ने बताया कि दैनिक यात्रियों की रोजमर्रा की जीवन में मेट्रो रेल बहुत उपयोगी है। शहर टू शहर, छोटे शहर से छोटे शहर तक रैपिड रेल यानी नमो भारत जो सेवा शुरू की गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और देश के दुरूह और दुर्गम क्षेत्रों में भी रेलवे के इंजीनियरों ने बहुत कमाल दिखाए हैं। आपने चिनाब रेलवे ब्रिज का उल्लेख किया, पहले कितने लंबी यात्रा होती होगी जब ये रेलवे ब्रिज नहीं रहा होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाया गया है। ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है और ये एफिल टावर जो पेरिस में है उससे भी 35 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है। लागत इसमें आई 1486 करोड़ रुपए की और इसकी मजबूती इतनी है कि ये 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने वाली हवाओं और रिक्टर स्केल पर अगर कोई 8 की तीव्रता तक भूकंप आता है उसको भी ये सहज ही झेल सकता है। इसके अलावा आपने अंजी खड ब्रिज का उल्लेख किया, इसकी विशेषता ये है कि ये भी जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर बना भारत का पहला केबल के सहारे लटका हुआ पुल है। कटरा और रियासी को ये पुल आपस में जोड़ता है। ये उधमपुर श्रीनगर बारापुला रेल लिंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी लंबाई 725.5 मीटर है, ऊंचाई नदी तल से 331 मीटर है। इसमें 96 केबलों का इस्तेमाल किया गया है और मुख्य स्तंभ नींव से 193 मीटर ऊंचा है और इसकी क्षमता है कि 213 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली जो हवाएं हैं उनको ये झेल सकता है। वो इस रफ्तार से चलने वाली हवाएं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और इस पर रेलगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर सकती हैं। एक और दक्षिण भारत के ऐसे ही अद्भुत पुल की बात कर लें, ये है पाम्बन ब्रिज जो तमिलनाडु में मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला है। मोदी सरकार के कार्यकाल में इसको नया स्वरूप दिया गया, नया बनाया गया। जो अब नया पुल बना है ये पाम्बन ब्रिज तमिलनाडु में, वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ये आधुनिक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक और ऑटोमेटेड सिस्टम पर काम करता है। डबल ट्रैक वाला ये ब्रिज, इस पर ट्रेनें 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजर सकती हैं। जब आपने बताया, उल्लेख किया कि जब कोई जहाज निकलना होता है पुल के रास्ते से, तो ये अद्भुत तकनीकी क्षमता है इस पुल की कि 5 मिनट के अंदर पूरा पुल दो हिस्सों में विभाजित होकर ऊपर की ओर उड़ जाता है, तो ऊंचे समुद्री जहाज हैं वो इसके रास्ते से निकल जाते हैं और फिर अगले 5 मिनट में इसको वापस पुल की शेप में लाया जा सकता है।
1: श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में प्रस्तुत है विशेष अंक बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर नीति को दिशा देने वाले पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार रवि पाराशर जी। रेलवे के बाद अगर एयरपोर्ट की चर्चा करें मिश्रा जी, तो और हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि जो धौलेरा एक्सप्रेसवे बना या जो धौलेरा एयरपोर्ट बना, उसको भारत के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन के नजरिए से विकसित किया गया। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में जो कुछ समय पहले तक, अगर 2014 से पहले की बात करें, तो सरकारी लाल फीताशाही बहुत ज्यादा चरम पर थी, तो गवर्नेंस रिफॉर्म्स किस तरीके से किए गए कि ये बड़े प्रोजेक्ट सफल हुए? साथ ही साथ ये जो धौलेरा एयरपोर्ट या फिर एयरपोर्ट्स, इस प्रभाव पड़ा, और जो हम निवेश की बात करते हैं कि विदेश से निवेश आए, उसमें एयरपोर्ट्स ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई?
0: बिल्कुल ठीक आपने कहा, धौलेरा एयरपोर्ट जो अभी बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है
1: जी।
0: धौलेरा एक ऐतिहासिक स्थान है, लोथल का आपने नाम सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है वो स्थान है। मुझे वहां भी जाने का सौभाग्य मिला। वहां किसी समय इतना बड़ा सी पोर्ट हुआ करता था, इतनी सारी समृद्धि उस जमाने में, बहुत सारे बीट्स के काम दुनिया भर से वहां का संबंध हुआ करते थे। आज वहां पहुंचना भी बड़ा मुश्किल था। तो जैसे मैंने बताया कि एक तो वहां पे जाने के लिए अहमदाबाद से डायरेक्ट वहां के सड़क धौलेरा के लिए बन गई है,
1: धौलेरा एक्सप्रेस वे।
0: अभी हाल में जो कैबिनेट के डिसीजन के साथ एक अप्रूवल किया गया, एक वहां पे भी रेल लिंक भी, फास्ट रेल लिंक भी जो है अहमदाबाद से डायरेक्टली वहां धोलेरा से जोड़ने के लिए एक रेल लिंक भी सेंक्शन कर दी और वहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। अब धोलेरा जो है एक बहुत बड़ा स्पेशल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सेंटर, जहां पे आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रही है, तमाम सारे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को मतलब कि जुड़ने का मतलब बहुत सारी किस्म की इंडस्ट्रीज वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है
1: जी।
0: आज एक वो नया स्वरूप लेकर के आगे बढ़ रहा है और केवल धोलेरा की कहानी नहीं है बल्कि उसके जैसे आज देश में तमाम सारे जो नए नए एयरपोर्ट्स बने, जो 174 मैंने आपने बताया कि 64 से लेकर के 170-175-74 से बढ़ करके 160-170 के आसपास आज एयरपोर्ट बन गए हैं और सारे चालू हो गए हैं। उन एयरपोर्ट्स पे अब जैसे नवी मुंबई का एयरपोर्ट है
1: जी,
0: या गुवाहाटी का जो नया एयरपोर्ट बना है
1: जी,
0: जेवर का जो नया एयरपोर्ट बना है, आपका चित्तूर का वहां साउथ का जो एयरपोर्ट बना, जो गोवा में एक अल्टरनेटिव एयरपोर्ट बना, मोपा का जो एयरपोर्ट बना
1: जी, कैंपागोड़ा,
0: हाँ, मतलब इतने सारे देश में जो एयरपोर्ट्स बने, एयरपोर्ट से हमने दुनिया से कनेक्टिविटी, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी हैं, तो दुनिया से अपने आप को जोड़ा, हमने लॉजिस्टिक्स को बहुत सारा, इससे हमारा काफी सारा जो है इससे जो व्यापार होगा, व्यापार हमारे इसमें काम आएगा। और एक आम आदमी के लिए जिस प्रकार का जो एक एयर फेयर हो गया है, आम आदमी को भी क्योंकि समय बचाना उसको, उसके लिए भी उतना मत पड़े, तो वो जो आपने जो बात कही, एक हवाई चप्पल में चलने वाला आदमी हवाई सफर कर रहा है, एक देश का एक नई तस्वीर उभर करके सामने आई है।
1: रवि जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, बतौर पत्रकार आप कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स इस देश में हैं और हम उड़ान योजना की बात कर रहे हैं और अब उड़ान 2.0 की भी बात हो रही है जिसमें और सुविधाएं आम नागरिकों को मिले। हमने ये भी देखा कि सरकार ने एयरपोर्ट्स पर मिलने वाली सुविधाओं को भी आम नागरिक के ध्यान में रखकर बहुत बदलाव किए हैं, चाहे वो वहां पर फूड आइटम्स के प्राइस को कम करना हो या फिर पैसेंजर्स के लिए लाउंज की सुविधा उपलब्ध कराना हो। बतौर पत्रकार जमीनी स्तर पर कितना बदलाव देखते हैं
2: आप? आनंद जी, जमीनी स्तर पर एक पत्रकार के तौर पर जो मेरे अनुभव हैं, मेरा करियर 1988-89 में पत्रकार के तौर पर शुरू हुआ था और उस समय मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि जो मेरा वेतन था उससे मैं हवाई यात्रा कर सकूंगा। और आज इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है और जो मेरी स्थिति है, आज मैं जब चाहूं समय बचाने के लिए हवाई यात्रा मेरी सीमा में, मेरी जेब की सीमा में, तो ये फर्क बहुत धीरे धीरे आया है और पिछले 10-12 साल से बहुत तेजी से हम देख रहे हैं। आपने बताया कि 2014 में हवाई अड्डे केवल 74 थे, अभी 165 हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। पहले क्या होता था कि आप घर के पास हवाई यात्रा करने के लिए भी आपको सड़क से बहुत लंबी चौड़ी यात्राएं करनी पड़ती थी, जो स्थिति आज नहीं है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया गया, 15 जून 2026 से यहां से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। हिंडन एयरपोर्ट से छोटे छोटे शहरों की हवाई कनेक्टिविटी बनाई गई है, तो दिल्ली NCR के जो लोग हैं उनके लिए और दूर दराज विदेश से आने वाले और दूर दराज के क्षेत्रों से राजधानी NCR क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए हवाई यात्रा की कितनी सुगमता हो गई है, कितनी सुलभता हो गई है, ये आज देखने को हमें मिलता है। और हवाई अड्डों, जो पुराने हवाई अड्डे थे, इस सरकार ने केवल उनकी क्षमता ही नहीं बढ़ाई, उनकी साज सज्जा, उन पर जैसे आपने कहा कि खान पान की सुविधाएं, उनका जो लुक भारतीय विरासत और भारतीय संस्कारों से जीवंत रहे, ऐसे प्रयास भी किए। हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने के लिए नए टर्मिनल भवन बनाए गए हैं। तो एक पत्रकार के तौर पर पिछले 12 साल के अनुभव मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग पहले हवाई यात्रा की कल्पना नहीं कर सकते थे अपने बजट के हिसाब से, वो आज हवाई यात्रा की कल्पना, अगर उन्हें कहीं अपेक्षाकृत जल्दी पहुंचना है, तो कर सकते हैं
1: जी। बिल्कुल। कार्यक्रम में अब चर्चा करते हैं सागरमाला की। श्रोताओं, सागरमाला के 5 प्रमुख पिलर्स हैं: पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट और कोस्टल शिपिंग। लेकिन मिश्रा जी, जो मेरा आपसे सवाल है वो वाटर मेट्रो को लेकर है। 2026 में यानी इसी वर्ष नेशनल वाटर मेट्रो पॉलिसी का ड्राफ्ट मसौदा पेश किया गया। सवाल ये है और बहुत सारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं कि जो वाटर मेट्रो की पहल है, एक तो उससे भूमि अधिग्रहण की जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी, उसमें भी हम कई सारे पेंच देखते थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना वाइबल है भारत जैसे देश में? क्या इसको एक शहर से दूसरे शहर तक जोड़ा जा सकता है? क्या है इसकी वर्तमान स्थिति और वास्तविक धरातल पर कब हम इसे देखने वाले हैं?
0: बहुत अच्छी बात कही आप आनंद जी आपने। ऐसा है जैसे मेट्रो आया, मेट्रो का क्या मकसद है कि शहर में आप हर किलोमीटर पे आपके स्टेशन हो, 800 मीटर से लेकर के 1000 कि कहीं से कहीं पहुंचना तो आप जो है 10-12 मिनट में आप एक मेट्रो स्टेशन में पहुंच सकते हैं
2: जी।
0: उससे पूरा शहर आज दिल्ली में 400 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो का नेटवर्क बना हुआ है, तो दिल्ली में कितना आसान हो गया, ट्रेवल कितना आसान हो गया है और भी बढ़ रहा है। अभी नए उसका जो फेज 5 का उसके मेट्रो का काम चल रहा है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे शहर हमारे देश में है जहां पे या तो समुद्र या वहां पे पानी का नेटवर्क बना हुआ है
2: जी।
0: अब वहां पे पहले क्या होता था कि पुराने जमाने वाली जो बड़ी बड़ी बोट चलती थी और वो आराम से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की रफ्तार से चली करती थी, आपको घंटों लग जाता था, कोई सुविधा नहीं होती थी धूप में और उसमें आप परेशान होते थे
2: जी।
0: मेट्रो ने क्या लाया, मेट्रो आपको कंफर्ट लाया, कनेक्टिविटी लाया, आपको जो पंक्चुअलिटी लाया
2: जी,
0: आपकी चीजों को आसान कर दिया, उसके उसके पूरी तरह से जा सकते हैं। पहले जो इन शहरों में क्या होता था, कोची शहर में, क्योंकि मैं उस समय भारत सरकार का सेक्रेटरी था इसी मिनिस्ट्री का और हमारी उसमें हमें सब सारा चीज डेवलपमेंट हो रहा था, तो आप कोची में अगर आप देखें तो वहां पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दूरी तो मुश्किल से 2 किलोमीटर की होगी, 1.5 किलोमीटर की होगी, लेकिन आपको 2500-2300 किलोमीटर जाना पड़ता था उसका समुद्र का जो अंदर गया उसे 30 किलोमीटर जाकर के आपको घंटों लग जाते थे
2: जी।
0: अगर इसको ऐसा आपको महसूस हो जाए कि जो वहां पे स्टेशन बना हुआ वो स्टेशन मेट्रो स्टेशन टाइप का, एयर कंडीशन है, बैठने के लिए अच्छी जगह है, सारी की सारी सुविधाएं हैं और आपको कंफर्ट है, अगर आप कुछ खाना पीना चाहे कुछ खरीदना चाहे सारी की सारी फैसिलिटीज है
2: जी,
0: ऐसा है तो हम आत्मनिर्भर भी हो चुके हैं। उस समय इस चीज को कोची में डेवलपमेंट शुरू किया गया और आज मुझे खुशी है कि वहां पे 20 स्टेशन में इस प्रकार के कंफर्टेबल बोर्ड्स और रेलवे स्टेशन वगैरह तमाम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। अब ये एक हमारे लिए नया अवसर पैदा हो गया और नया अवसर ये पैदा हो गया कि इसके हिसाब से अब आप हमारे देश में ऐसे बहुत सारे, क्योंकि हमारे देश में करीब 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और उसमें कई सारे जगह पे इस प्रकार की चीजें हैं, तो अगर जहां पे है तो वहां पे ऐसे 18 शहर चुने गए हैं जहां पे इस प्रकार की वाटर मेट्रो की सुविधा हो सकती है। इसी में मैं आपको एक और चीज बताऊं कि केवल वाटर मेट्रो के अलावा अब एक नई चीज पहले बार देश में होने जा रहा है, उसमें अगेन मैं एज ए सचिव मुझे मौका मिला काम करने का, भारत में पहले बार हमको ट्रांसपोर्ट को एयर के माध्यम से यानी रोपवे, अभी तक हमारे देश में रोपवे का उपयोग होता था, वो कोई धार्मिक स्थान है वहां पे जाने के लिए लोगों को केवल टूरिस्ट पर्पज से, बकायदे आप अपना सामान लेकर के कहीं से कहीं आप जा सकते हो। और बनारस में बहुत जल्दी मैं आशा करता हूं कि ये जो रोपवे जो बनेगा, ऐसे शहरों में बहुत कंजेशन आज लैटिन अमेरिका के कई सारे शहरों में, यूरोप के कई सारे शहरों में रोपवे का उपयोग करते हैं ट्रांसपोर्ट के तौर पे
2: जी।
0: ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया चीज और पहले बार उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहला हमारा देश का जो ट्रांसपोर्ट रोपवे, बहुत जल्दी मैं आशा करता हूं कि शुरू होने जा रहा है।
1: कार्यक्रम में समय कम है, एक एक सवाल आप दोनों से बहुत संक्षेप में, रवि जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो बॉर्डर एरियाज हैं हमारे, चाहे वो लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो या उत्तर पूर्व के सीमावर्ती क्षेत्र हो, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 2014 के बाद हमने देखा है कि वहां भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है, किस तरह देखते हैं इस बदलाव को?
2: आनंद जी देखिए, पिछली सरकारों की जो नीति थी उस नीति को बिल्कुल मोदी सरकार ने उलट दिया है। मुझे याद है कि 2013 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने पार्लियामेंट में बताया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास इसलिए नहीं करती है केंद्र सरकार कि कहीं जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करें और उसका फायदा हमारे दुश्मन न उठा लें, इसलिए जैसा है दूभर को दूभर बना रहने दीजिए। लेकिन 2014 में अगले साल मोदी सरकार केंद्र में बनते ही ये नीति बिल्कुल आमूल चूल बदल दी गई और अब स्थिति यह है कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, वहां सुरंगों का विकास, अटल टनल और बहुत सारी सुरंगें बनाई जा रही हैं जो आपातकाल में बिगड़े हुए मौसम में सेना के आवागमन को बहुत सुगम बनाती हैं, बहुत सारे बंकर सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों को जो बसे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे स्थानीय स्तर पर काम किए जा रहे हैं, सड़कें बहुत मजबूत और पक्की बनाई जा रही हैं, और इसके अलावा जो हमारे रोड कनेक्टिविटी की बात हम कर रहे थे, हम वहां भी देखते हैं कि उनको इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि हमारे हवाई जो हमले करने में सक्षम जो विमान है, लड़ाकू विमान, उन पर टच लैंडिंग कर चुके हैं यानी उतर सकें अगर ऐसी स्थिति हो तो। तो सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के मामले में मोदी सरकार बहुत प्राथमिकता दे रही है और पिछली सरकारों के तमाम नीतियों के उलट ये काम अब वहां हो रहा है।
1: मिश्रा जी, कार्यक्रम के समापन में बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की गति है इस देश में, उससे विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कितना हमें आसानी होने वाली है।
0: मैं इसके पहले एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, जो फ्रीट कॉरिडोर, क्योंकि हमने अभी तक मोबिलिटी जो है पैसेंजर मोबिलिटी की ज्यादा बात की। हमारा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ईस्टर्न और वेस्टर्न बनकर के लगभग 3,800 किलोमीटर से ज्यादा है। इससे पूरा का पूरा एक हमारा फ्रीट ईस्ट से लेकर वेस्ट, वेस्ट से लेकर के ये सारा इतना बड़ा ये फैसिलिटी बन गई है। और नया इसके बाद फिर से अभी सूरत से लेकर के दुला, वो भी प्रारंभ किया, उसको शुरुआत का अनाउंस किया गया। तो देश में हमारा लॉजिस्टिक का मूवमेंट इतना आसान किया गया जिससे लॉजिस्टिक का कॉस्ट बहुत हमारा कम हो जाएगा। देखिए, कोई भी देश आगे बढ़ता है तब जबकि उसके लिए ऐसा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जैसे कि लोगों का मूवमेंट आसान हो जाए, गुड्स का मूवमेंट आसान हो जाए, सारा का सारा प्रोसेसेस हमारे आसान हो जाए और वो सब कुछ बनकर के तैयार है या तैयार होता हुआ दिख रहा है। देखिए, हम बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि 100% हम वहां पहुंच चुके, तैयार होता हुआ दिख रहा है और ये सारा का सारा जो धरातल तैयार की जा रहा है ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 में भारत को विकसित बनाने का, वो हम विकसित होकर के रहेंगे। क्योंकि जब ये सब कुछ हो जाएगा तो एक तरफ हमारा मेक इन इंडिया हो रहा है, मेक फॉर द वर्ल्ड हो रहा है, एक तरफ हम जितनी सारी नई टेक्नोलॉजीज है, आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, सब में हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, हर तरह की हर चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम सब चीजों को बिल्कुल आसान कर दे, मैंने ये लुब्रिकेशन कहेंगे कि इकोनॉमी को लुब्रिकेशन लुब्रिकेट कर रहा है। एक और भी बड़ा इसका इम्पोर्टेंट पहलू है, ये सारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से इतना बड़े लेवल पे रोजगार क्रिएट हो रहा है
1: जी,
0: और उस रोजगार के क्रिएट होने से लोगों की इनकम बढ़ रही है
1: जी।
0: तो एक इनकम तो इकोनॉमी के ग्रोथ से हो रहा है, दूसरा इसके वजह से तमाम सारे हमारे जो नौजवान है, जो हमारे युवा ज्योति, जो नए आजकल के बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं, उनके लिए इतना बड़ा रोजगार का साधन भी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उनको नए साधन क्रिएट कर रहा है। ये हमारे देश की बदलती हुई तस्वीर है। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आपका जन सेवा से देश सेवा की बात है, वो इस प्रकार की चीज करके आज देश को हमारे एक नए लेवल पे, एक नए भारत को, आत्मनिर्भर भारत, एक विकसित भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल, जब बुनियादी ढांचे के पहिए तेजी से घूमते हैं तो पूरे देश की प्रगति को नई रफ्तार मिलती है। आज भारत सिर्फ रास्ते नहीं बना रहा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के समृद्ध भविष्य की नींव रख रहा है। डॉक्टर मिश्रा, आपका, रवि पाराशर आपका, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद आनंद जी।
1: ये थी बुनियादी ढांचे की वो नई रफ्तार जो आज भारत के हर कोने को एक दूसरे से जोड़ रही है और देश को आत्मनिर्भरता के साथ साथ समृद्धि के मार्ग पर आगे भी बढ़ा रही है। जनसेवा से देश सेवा की इस विशेष श्रृंखला के आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 23वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और राजनीतिक विश्लेषक रवि पाराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി പൊതുസേവനത്തിന്റെ 25 വർഷം തികയ്ക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കേന്ദ്ര വാർത്താ വിഭാഗം അവതരിപ്പിച്ച പ്രത്യേക പരിപാടിയാണ് ഇതുവരെ കേട്ടത്. ഡൽഹി റിലേ.

0: आधुनिकयुद्धकलायाम् अथ च वैश्विकसुरक्षाव्यवस्थायां सम्भूयमानान् द्रुतपरिवर्तनान् सूक्ष्मतया निरीक्षते। अद्य जोधपुरवायुसेनाकेन्द्रे 26,000 तरङ्गशक्ति इति युद्धाभ्यासं सम्बोधयन् रक्षामन्त्री अवोचत् यत् पूर्वप्रतिष्ठिता विश्वव्यवस्था तीव्रगत्या परिवर्तमाना वर्तते। अपरत्र उदीयमानायाः नूतनवैश्विकव्यवस्थायाः स्वरूपम् एतावतापि अनिश्चितं वर्तते।
1: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
0: अद्य महालयपर्व सोल्लासं परिपाल्यते, येन सह भगवत्याः दुर्गायाः पारम्परिकम् आवाहनम् अथ बंगालप्रदेशस्य बृहत्तमस्य वार्षिकमहोत्सवस्य दुर्गापूजापर्वणः आगमनसन्देशः प्राप्यते। पारम्परिकहिन्दुमान्यतानुसारम् अयं दिवसः पूर्वजेभ्यः श्रद्धाञ्जलिसमर्पणाय, समर्पितानां पितृपक्षाणां परिसमाप्तेः अथ च देवीपक्षाणां मङ्गलमयप्रारम्भस्य परिचायकः वर्तते। अस्माकं कोलकाता वार्ताहरः सूचयति यत् महालयपर्व आकाशवाण्याः कालजयी ध्वनिकार्यक्रमेण महिषासुरमर्दिनी इत्यनेन सह अभिन्नतया सम्बद्धमस्ति, यस्य प्रसारणं प्रत्यूषे क्रियते। वीरेन्द्रकृष्णभद्रस्य विशिष्टवाचनेन, संस्कृतमन्त्रघोषैः अथ च भक्तिगीतैः सज्जितः अयं कार्यक्रमः वंशेभ्यः बंगालसंस्कृतेः अविभाज्यम् अङ्गं वर्तते। भगवत्याः दुर्गायाः आवाहनेन सम्पूर्णपरिवेशः भक्त्या, उत्कण्ठया अथ उत्सवीयोल्लासेन परिपूर्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी महालयपर्वणः शुभावसरे देशवासिभ्यः शुभाशयान् प्रकटितवान्। सामाजिकपटलीयसन्देशे प्रधानमन्त्रिणा कामना कृता यत् भगवत्याः दुर्गायाः मङ्गलमयः आशीर्वादः समाजे सुखं करुणां नवाशां च सञ्चारयेत्। सः सर्वत्र शान्तेः, समृद्धेः च साम्राज्यं प्रवर्धेत इति प्रार्थितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स्पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुसरन्तु। आकाशवाणी समाचार इति व्हाट्सएप वाहिन्या च सह संयोज्यन्ता।
0: भारतीय जनता पार्टी इति दलेन अद्य प्रतिपादितं यत् सद्यः सम्पन्न उपनिर्वाचनेषु दलस्य विजयेन इदं स्पष्टीभवति यत् देशे अराजकतां प्रसारयितुम् इच्छतां तत्त्वानां प्रयासाः लोकतन्त्रेण निरस्तीकृताः। नवदिल्ल्यां वार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधयन् भाजपा सांसदः, वरिष्ठनेता च रविशंकरप्रसादः अवोचत् यत् भारतीय जनता दलं शान्तिपूर्णप्रतिषेधस्य विरोधी नास्ति, किन्तु विपक्षिदलानि स्वकीयां निर्वाचनपराजयं परिहर्तुं मार्गेषु विरोधप्रदर्शनस्य आश्रयं गृह्णन्ति। सः विपक्षिदलानामुपरि आरोपं कृतवान् यत् ते स्वप्रतिषेधेन विगत त्रिचतुर्दिनेभ्यः दिल्लीवासिनां कृते महतः क्लेशान् उत्पादयन्ति। भाजपानेत्रा अग्रे स्पष्टीकृतं यत् देशः लोकतान्त्रिकमर्यादया, संसदि निर्वाचितप्रतिनिधिभिः अथ च उत्तरदायित्वभावेन एव सञ्चाल्यते। सः लोकसभायां विपक्षनेतारं राहुलगान्धिनम् अभिलक्ष्य आरोपम् अकरोत् यत् तेन संवैधानिकसंस्थानां गरिमा कलंकिता, अवमानिता च।
3: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले CJP और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में CPI CPM भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: संयुक्त राष्ट्र संघे भारतेन जम्मू कश्मीर विषये मिथ्या प्रचाराय असत्य कथनानां च कृते पाकिस्तानस्य तीव्रा भर्त्सना कृता।

0: ഇപ്പോൾ സമയം 8 മണി കഴിഞ്ഞ് 44:51. ഇനി 8:45 സമാചാർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് 9 മണിക്ക് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹിയിലെ.
1: നമസ്കാർ. ആകാശവാണി സേ സമാചാർ സന്ധ്യ കെ സാത്ത് മേ വിശാൽ ശർമ്മ. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मित मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया. दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है. विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया. रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए. और अब समाचार विस्तार से. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए. अदीस अबाबा में डॉ जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की. उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया.
2: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली.
3: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए. इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है. हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है.
1: अफ्रीका के 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का 4th सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है. भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है. भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा. न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की.
4: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है. हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए. वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है.
1: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मित मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है. गुजरात निवासी कैप्टन स्मित पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था. घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की. इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे. भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा. नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है. उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट.

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
1: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
3: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं,
4: स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए,
3: लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में बात पीएम जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
5: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने का एक अहम माध्यम बन गई है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है और आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
6: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन

0: जनधन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जनधन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
1: गुजरात के मुकेश नाइक ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
2: मेरा नाम मुकेश भाई नायका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
1: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रूपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा, जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रुपये के अधिशेष पर थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़ और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार करने के लिए सरकारों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन ने सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे।
4: भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ रहे थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार में पत्नी और 2 विवाहित बेटियां हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
3: रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमरीका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमरीकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल्स सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समाचार

0: अध्याय एक प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय संगीत गायिका हैं और आकाशवाणी की ए ग्रेड कलाकार हैं। आप विदुषी वसंत लक्ष्मी हेब्बार और डॉक्टर वी अरविंद हेब्बार से अपना संगीत प्रशिक्षण शुरू किया और थोड़े समय तक आप स्वर्गीय श्रीमती रंजनी हेब्बार से भी शिक्षा हासिल की। आजकल आप संगीत गुरु चित्रवीणा एन रविकिरण के मार्गदर्शन में शिक्षा ले रही हैं। अपनी सहगायिका समन्वी के साथ आप लतांगी सिस्टर्स के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप भारत और अमेरिका में 200 से अधिक संगीत समारोह में प्रस्तुति दी है, जिनमें द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई, क्लेवलैंड त्यागराज महोत्सव और शिकागो त्यागराज उत्सव जैसे प्रतिष्ठित मंच शामिल हैं। इसके अलावा आप भारत, दुबई और जर्मनी में प्रसिद्ध कथावाचक श्री विनय वाराणसी के साथ भी कई प्रस्तुतियां दी है। अर्चना को MS सुब्बलक्ष्मी फेलोशिप अवार्ड, युवा संगीत सम्राट प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार और राग लय प्रभा जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है। संगीत के साथ साथ आप कीर्तनास ऑफ कर्नाटक पुस्तक का सह लेखन किया है और दासार्चने प्रोजेक्ट के तहत 101 कृतियों की रिकॉर्डिंग भी की है।
1: अर्चना इज अ प्रोमिनेंट कर्नाटिक वोकल आर्टिस्ट एंड एन ए ग्रेडेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। She began her music training in 2008 under Vidwan Vasanta Lakshmi Hebbar and Dr. V. Aravinda Hebbar. She also had a brief training period under late Srimati Ranjani Hebbar and has been continuing her advanced learning under the guidance of Chitraveena N. Ravikiran at present. Alongside her duet partner Samanvi, together known as the Latangi Sisters, she has performed over 200 concerts across India and the US, including prestigious venues like the Music Academy Chennai, Cleveland Tyagaraja Festival, and Chicago Tyagaraja Utsavam. She has also collaborated with renowned storyteller Sri Vinay Varanasi across India, Dubai, and Germany. Archana's accolades include the MS Subbulakshmi Fellowship Award, first prize in the Yuva Sangeeta Samrat competition, and the Raga Laya Prabha Award. Additionally, she co-authored the book Kirtanas of Karnataka and recorded 101 compositions under the Dasarchane project.
0: आज के संगीत कार्यक्रम में आपको वायलिन पर साथ दे रही हैं तन्मयी उपंगला और मृदंगम पर हैं सुनाद कृष्णा अमय और मोरसिंग पर हैं बालकृष्णा होसमने। अर्चना उपाध्याय अपने कार्यक्रम की शुरुआत लालगुड़ी जी जयरामन जी की एक रचना एंतो प्रेमा वर्णा से कर रही हैं, जो राग बहुदारी और आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट शी विल बी अकंपनीड ऑन द वायलिन बाय तन्मयी उपंगला, ऑन द मृदंगम बाय सुनाद कृष्णा अमाई एंड ऑन द मोरसिंग बालकृष्णा होसमने। अर्चना उपाध्याय विल बिगिन हर कॉन्सर्ट विद एंतो प्रेमा, a varna in raga bahudari set to aditala, composed by Lalgudi G. Jayaraman.

0: राग बहुदारी के बाद अब प्रस्तुत है पुरंदरदास की एक रचना धूपारतीय, जो मोहन कल्याणी राग तथा आदिताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन बाय पुरंदरदासा, धूपारतीय, सेट इन राग मोहन कल्याणी एंड आदिताला।

0: अब प्रस्तुत है मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना श्री गुरु गुहा, जो राग उदय रविचंद्रिका तथा रूपक ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन बाय मुत्तुस्वामी दीक्षितर श्री गुरु गुहा विच इज सेट इन राग उदय रविचंद्रिका एंड रूपक ताला।

0: अपनी कार्यक्रम को जारी रखते हुए अर्चना उपाध्याय अब प्रस्तुत करेंगी ऊतुकाडु वेंकट रवि की रचना रसिक महोत्तमा, जो राग सरसांगी तथा मिश्र चापूताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर कॉन्सर्ट, अर्चना उपाध्याय विल नाउ प्रेजेंट रसिक महोत्तमा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ ऊतुकाडु वेंकट कवि, विच इज सेट इन राग सरसांगी एंड मिश्र चापूताला।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे प्रस्तुत किया मृदंगम पर सोनाद कृष्णा अमय तथा मोरसिंग पर बालकृष्ण भस्म ने। अर्चना उपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन त्यागराज की एक रचना चल रे रामा से कर रही हैं, जो राग आहिरी तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: That was Tanyavartanam, presented by Sunada Krishna Amai on Mridangam and Balakrishna Hosmane on Morsing. Archana Upadhyaya will now conclude her concert with Chellare Rama, a composition of Tyagaraja, which is set in Ahiri Rag and Mishra Chapu Tala.

0: अखिल भारतीय संगीत के कार्यक्रम में अब तक आप अर्चना उपाध्याय का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। आपके साथ वायलिन पर साथ कर रहे थे तन्मयी उपंगड़ा तथा मृदंगम पर सुनाद कृष्णा अमय और मोरसिंग पर थे बालकृष्णा होसमने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी मंगलूर के स्टेशन में रिकॉर्ड कर आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ आज का अखिल भारतीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: In tonight's national program of music, you were listening to a Carnatic vocal recital by Archana Upadhyaya. She was accompanied on the violin by Tanmayi Uppangala and on the mridangam Sunada Krishna Amai and Balakrishna Hosmane on Morsing. This concert was recorded earlier at the studios of Akashwani Mangaluru and broadcast from Akashwani Delhi. Please stand by for our next program.
2: ഇന്ന് ദേശീയ സംഗീത പരിപാടിയിൽ അർച്ചന ഉപാധ്യായ അവതരിപ്പിച്ച സംഗീത കച്ചേരിയാണ് കേട്ടത്.

0: ആകാശവാണി സമയം 11 മണി. ഇനി പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി പൊതുസേവനത്തിന്റെ 25 വർഷം തികയ്ക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കേന്ദ്ര വാർത്താ വിഭാഗം തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ച പ്രത്യേക പരമ്പരയുടെ ശബ്ദലേഖനം കേൾക്കാം.
1: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 24वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा भारत की विरासत संस्कृति और आत्मविश्वास. इसमें भाग ले रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और भारतीय विद्या भवन के डीन प्रोफेसर डॉक्टर शशिबाला. कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया.
2: नमस्कार और आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है जन सेवा से देश सेवा. आज की जो चर्चा है वो है भारत की विरासत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में और भारत के आत्मविश्वास के बारे में. मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार निहारिका और हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शशि बाला, सीनियर इंडोलॉजिस्ट, डीन सेंटर ऑफ इंडोलॉजी भारतीय विद्या भवन, और डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, मेंबर सेक्रेटरी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स. नमस्कार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में. पहले हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं. हम अक्सर किसी भी सभ्यता को किताबों से, तारीखों से, इतिहास के माध्यम से या स्मारकों के माध्यम से समझते हैं, लेकिन संग्रहालय, उत्सव या विश्वविद्यालय एक नया तरीका है हमारी विरासत के करीब आने का, उसे समझने का और उसे वास्तव में अनुभव करने का. आज के जमाने में अगर मैं बात करूं तो भारत की विरासत के प्रति दृष्टिकोण किस तरह बदल रहा है और ये आम नागरिक के और करीब किस तरह आ रही है. डॉक्टर सच्चिदानंद, पहले आपसे शुरुआत करते हैं.
3: देखिए, क्या है संस्कृति को हमारे देश में जो समझने का तरीका रहा है वो बिल्कुल अलग रहा है, क्योंकि संस्कृति हमारी जीवन का ऐसा एक अविभाज्य अंग रहा है प्रारंभ से ही, जो लगातार समय के साथ साथ अपने आप को और परिष्कृत करती गई है. इसलिए कहा जाता है नित्य नूतन चिर पुरातन, इस बात को कहा जाता है. तो हर बार उसमें एक न एक परिष्कार होता है, इवोल्यूशन होता है. तो अभी जैसे ही पिछले कुछ समय से हम देखते हैं कि संस्कृति को जानने और समझने का एक जो पूरा का पूरा नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो बदल गया है और किस तरह से संस्कृति हमारे चिंतन की मुख्य धारा में आ रही है, तो निश्चित तौर पर लोगों के बीच में भी संस्कृति को लेकर जो जागृति है, जो प्रेरणा है, वो और अधिक बढ़ गई है. चाहे फिर वो हमारे सिर्फ म्यूजियम्स ही नहीं है, म्यूजियम्स हैं, आर्काइव्स हैं, हमारी लाइब्रेरीज हैं, हमारी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, और इतना ही नहीं, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको सबको भी देखने का एक नजरिया अभी पिछले कुछ समय में एकदम बदला है. इसलिए हम देखते हैं कि बहुत लोग आजकल, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो सोशल मीडिया पर संस्कृति की बात कर रहे हैं, अपने ग्रंथों की बात कर रहे हैं, अपनी परंपराओं की बात कर रहे हैं, तो एक अलग तरह के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं.
2: और शायद मनोरंजन के तौर पे भी लोग और तरीके ढूंढने लगे हैं अपनी सभ्यता के और करीब आने के.
3: जी जी, बिल्कुल सही बात है. और इसलिए हम देखते हैं कि जहां भी कहीं संस्कृति पर कोई कुठाराघात होता है या हमारी शाश्वत मान्यताओं पर जब कभी कोई कुठाराघात होता है, तो लोग ही इसका प्रतिकार करते हैं, समाज ही इसका प्रतिकार करता है. इसलिए देखा गया कि जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, फिर वो चाहे हमारी परंपराओं की हो, हमारे मेलों की हो, व्रत की हो, त्योहारों की हो, अनुष्ठानों की हो, उनको लेकर एक सकारात्मक भाव, क्योंकि लोगों ने ये भी समझा कि इनके पीछे का तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, और इसके पीछे फैक्ट्स कैसे रहे, तो हमारे ग्रंथों से कैसे वो सारी चीजें आई. तो ये कुल मिला के संस्कृति को देखने का एक नया नजरिया, नवोन्मेष एक तरह से कहा जा सकता है.
2: डॉक्टर शशि, इसमें मैं एक विचार और जोड़ना चाहती हूँ कि आजकल OTT के माध्यम से कई कहानियां हमारी सभ्यता से जुड़ी सामने आ रही हैं. आप अपने विचार किस प्रकार व्यक्त करेंगे इस बारे में?
4: OTT के माध्यम से बहुत कुछ सामने आ रहा है, परंतु बहुत कुछ नहीं भी आ पा रहा. भारत में एक नई चेतना आई, उसके कई कारण है, जैसे कि जोशी जी ने कहा कि एक नवोन्मेष है, परंतु ये आप निश्चित समझ लीजिए कि क्षणे क्षणे नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया. हम कहते हैं प्रति क्षण जो एक नए नए वस्तुओं को अपने में संजो रही है, परिवर्तित भी हो रही है, परंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी अस्मिता, भारत की आत्मा, भारत की पहचान उसकी संस्कृति है. किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति होती है, और भारत की संस्कृति विलक्षण इसलिए है, क्यों? क्योंकि वो ऋषियों मुनियों के द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर है. जो उसकी अंतरधारा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो आप बाह्य देखते हैं उसमें परिवर्तन होता है। पिछले दिनों हमारे विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में कुछ ये चर्चाएं, कुछ बच्चों को शिक्षण में कुछ ये ऐड किया गया कि आप इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर आइए, आप भारतीय ज्ञान परंपराओं की ओर ध्यान दीजिए। तो दूसरी ओर मैं ये देख रही हूँ कि जब हमारे देश के लोग बाहर अब अधिक जाने लगे, पहले भी जाते थे परंतु अब अधिक जाने लगे, भी देखने लगे भारत का कितना सम्मान है, क्यों है, कहाँ कहाँ हमारी संस्कृति बिखरी पड़ी है, लोग छोटी छोटी बातें भी देखते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है, अरे इंडोनेशिया में रामायण है
2: जी।
4: अरे इंडोनेशिया में, थाईलैंड में रामायण है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें जब उन्हें पता चलती हैं तो उनको एक स्वाभिमान जागृत होता है। दूसरा, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री गए यूरोप यात्रा पे, तो जब आइसलैंड आदि में गए वो लोग, तो वहां पर एक शब्द आया संबंध, कि आपकी भाषा में भी है, हमारी भाषा में भी है, तो लोगों में एक चेतना आई। जैसे कि हजारों शब्द सारी यूरोपियन भाषाओं में संस्कृत के बिखरे पड़े हैं, तो जब ये

0: चर्चा के विषय बनते हैं। दूसरा, जैसे जैसे सोशल मीडिया पर इतिहास के विषय में बहुत सी कहानियां आपने सुननी होंगी, तो युवा वर्ग उस ओर आकर्षित होने लगा, जाने लगा, तो एक उनमें क्रांति आ रही है। फिर भारतीयों ने बहुत अपमान सहा, जहां भी जाते थे हम, क्योंकि हमारा माइंड इतना कॉलोनाइज्ड है, इतनी दास मानसिकता हो गई थी कि हम लोग सोचते थे जो बाहर है, जो विदेश में है, वही अच्छा है। परंतु जैसे जैसे भारत का सम्मान बढ़ा पिछले 10-12 वर्षों में, जो भारत का सम्मान बढ़ा, वैसे वैसे भारतीयता का सम्मान बढ़ा, भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ा, और जैसे जैसे भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ता है, तो हमारी युवा पीढ़ी को स्वाभिमान की अनुभूति होती है, आत्मविश्वास जागता है। फिर उनको पता चलता है कि अच्छा, ये हमारे पूर्वज थे, इन्होंने विश्व को इतना ज्ञान दिया, तो उनके और आत्मगौरव की अनुभूति होती है। तो बहुत सारे कारण है, मैं कहना चाहूंगी, जिनके कारण से आज भारत में एक आपको क्रांति का सा, क्रांति नहीं कह सकते परंतु उसके जैसा क्योंकि मन बदले हैं, लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, क्योंकि केवल मटेरियलिस्टिक अप्रोच में आप कितना रहेंगे। उनको इतने मन ठीक करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए इतनी टेंशन है, उससे रिलैक्सेशन के लिए तो वो योग पर जाते हैं, ध्यान पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उनको कहीं उसकी अनुभूति होती है, तो उन्हें शांति मिलती है। आज का व्यक्ति शांति ढूंढ रहा है, पैसा बहुत हो गया लोगों के पास, पर शांति कहीं खो गई।
1: यानी संस्कृति और सभ्यता एक नया कारण बन गई है आत्मविश्वास और शांति के लिए। आत्मविश्वास की बात करेंगे, इन दोनों उत्तरों में बहुत ही खूबसूरत बातें निकल के आई, लेकिन पहले हम आत्मविश्वास की चर्चा कर लेते हैं। हम अक्सर सांस्कृतिक आत्मविश्वास की जब बात करते हैं तो उसकी क्या परिभाषा होती है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो परिभाषा किस तरह आपको बदलती हुई नजर आ रही है? और इसमें एक विचार हम और ये जोड़ सकते हैं कि जितना सम्मान हम अपनी सभ्यता संस्कृति को देंगे, शायद वैश्विक स्तर पर उतना ही सम्मान और लोग भी इसे देंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद, आपका क्या कहना है इस बारे में?
2: आपने बड़ी अच्छी बात कही, सांस्कृतिक आत्मविश्वास, इसकी जड़ें कहाँ हैं, आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब ब्रिटिश आए थे और ब्रिटिश हुकूमत ने ये सोचा कि हम भारत पर कैसे हम पूरा राज कर सकते हैं, तो उनको ये बात बहुत अच्छे से महसूस हुई कि यहाँ इस देश की सांस्कृतिक जड़ें, जैसा भी प्रोफेसर शशि बालाजी भी बता रही थी, कि सांस्कृतिक जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उनका लोगों का विश्वास डिगाना बहुत कठिन है। संस्कृति की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, इसलिए बार बार हम किसका नाम लेते हैं, लॉर्ड मैकाले का नाम लेते हैं, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने इस बात को समझा, और इसलिए उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में लाया, उसमें उन्होंने कहा ही ये कि भारतीयों को अगर किसी तरह से जीतना है तो सबसे बड़ी बात होगी कि हमें उनकी सांस्कृतिक जड़ों को खोखला करें, उनके सांस्कृतिक आत्मविश्वास को डिगाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत में तो उर्दू और संस्कृत में जो ग्रंथ हैं वो तो ब्रिटेन में, यूरोप की किसी भी एक बड़ी लाइब्रेरी की एक कोने में समा जाएं, इतनी उनकी वर्थ है, इतना ही उनका मूल्य है। जिस तरह के न्यूनता बोध से शुरू किया, फिर उन्होंने जो हमारी हर एक चीज में कहा कि भाई इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ना आपके मान्यताओं में कोई लॉजिक है, ना आपकी परंपराओं में लॉजिक है, ना आपके शास्त्रों में लॉजिक है, ये सारी चीजें हमारी पीढ़ी के अंदर, तत्कालीन पीढ़ी के अंदर डालना शुरू किया, वहां से न्यूनता बोध प्रारंभ हुआ। तो ये जो इस समय का काल है, जब हमने भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की, आपने देखा होगा आजादी के बाद भी कई वर्षों तक भारतीय ज्ञान परंपरा की उस तरह से बात नहीं की गई।
1: बिल्कुल,
2: ये आप देख रहे हैं कि पिछले 12-14 साल में लगातार ऐसा हुआ है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर शोध हो रहे हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह से बातें लोगों के सामने ला रहे हैं। तो यानी क्या हुआ कि ये समझ में आया कि जो बातें हमको न्यूनता बोध दिलाती थी अनावश्यक रूप से, ये समझ में आया कि नहीं, उन सबके पीछे तर्क था, उन सबके पीछे शास्त्र था, उन सबके पीछे विज्ञान था, और इसलिए ये सारी बातें फिर से लौट के आई। यही है जो सांस्कृतिक आत्मविश्वास जिसकी आप बात कर रहे हैं।
1: यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगी कि किसी भी संस्कृति की पहचान होती है उसकी भाषा और उसकी कहानियां, और कहानियों को सामने लाने का एक माध्यम होता है संग्रहालय। पिछले कुछ सालों में जैसे आपने जिक्र किया कि कई तरीके से कई सारी कहानियां, कई सारे शास्त्रों की बातें सामने आई है, और उसमें से दो महत्वपूर्ण ऐसे संग्रहालय हैं, जैसे प्रधानमंत्री संग्रहालय और जैसे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, यानी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। और संग्रहालय एक ऐसा स्थान है जहां हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी कहानियों को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो संग्रहालय एक संस्कृति को आगे बढ़ाने का कितना महत्वपूर्ण जरिया है आपके नजरिए से?
2: पहले तो इस बात को समझना होगा कि भारतीय संस्कृति एक अलग तरह की संस्कृति थी। हमारे जैसे मंदिर हैं, मठ हैं या और भी

0: सार्वजनिक स्थान है, वहां पर भी हम समाज की जो एक कलेक्टिव मेमोरी है उसको हम संग्रहित करके रखते थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि मंदिरों में भी कई बार उत्कीर्ण बहुत सारे शिलालेख होते थे, बहुत सुंदर से म्यूरल्स बनाए जाते थे, ये भी एक तरह का संग्रहालय था। लेकिन जब ये संग्रहालय शास्त्र हमारे समाज में आया, तब से हमने संग्रहालय को भी बहुत अच्छी तरह से अंगीकृत किया। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण पहल हुई जिसमें हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थापना की। भारत में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनका जीवन कैसा था, उनका संघर्ष कैसा था, उन्होंने अपनी यात्रा को कैसे आगे बढ़ाया, इसका पूरा का पूरा दस्तावेज उस प्रधानमंत्री संग्रहालय में मिलता है। न सिर्फ दस्तावेज मिलता है, आपको उसके साथ अपने आप को इंटरेक्ट करने का, संवाद करने का भी अवसर मिलता है
1: और शायद इतिहास को एक नए नजरिए से परखने
0: बिल्कुल
1: का
0: निश्चित तौर पर। और आप उनके साथ जब संवाद करते हैं तो आप उनके साथ एक अपना एक जीवंत संपर्क बनाते हैं। तो कई लोग उससे अचंभित भी होते हैं कि अरे इनके बारे में तो मुझे ये मालूम ही नहीं था, इनके बारे में तो मैंने ये जानकारी ही नहीं ली थी। तो अपने आप में वो एक प्रधानमंत्री संग्रहालय उस तरह से परिपूर्ण हुआ। दूसरा, ये जो आपने कहा जनजातीय हमारे जो गौरव थे उनके आधार पर जो संग्रहालय बनाना, क्योंकि क्या हुआ कि जब स्वाधीनता संग्राम की बात आई तो फिर कुछ गिने चुने लोगों को ही स्वाधीनता संग्राम का श्रेय दिया जाने लगा, हम ये भूल गए। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आजादी का अमृत महोत्सव प्रारंभ किया तब उन्होंने कहा था कि हम इसमें ऐसे गुमनाम या जो भुला दिए गए उन तमाम योद्धाओं को भी याद करने का प्रयास करें। और इसलिए आपने देखा होगा कि पूरे देश में एक तरह का एक आंदोलन हो गया कि हम ढूंढे हमारे ऐसे कौन कौन से योद्धा थे। अभी आप जनजातीय विद्रोह की बात करते हैं, ये जो हमारा मानपुर का विद्रोह है उसको कोई जानता ही नहीं था, उसमें 1500 लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, किसी को पता ही नहीं था। तो ये जो बातें आईं तो इसलिए उनके जीवन पर एक गौरव गाथा उनकी मालूम पड़े, इसलिए हमारे देश में जनजातीय संग्रहालयों की ये जो योजना बनाई गई, इन तमाम योद्धाओं की जीवन गाथाएं वहां पर आए, लोग समझें कि कहां कहां किस किस क्षेत्र में हमारे किस किस महान योद्धा ने काम किया। तीसरा, एक बहुत बड़ा संग्रहालय जो अभी बनने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, वो है युग युगीन भारत, जो कि संभवतः विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा।
1: अगर हम मंदिरों की बात करें तो काशी, अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, उज्जैन, केदारनाथ, आज के जमाने में ये तीर्थ स्थान हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ये इकोलॉजी का एक रूप है, ये कंजर्वेशन का एक रूप है, ये अर्बन डेवलपमेंट का भी एक रूप है। इन सब चीजों में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है और ये हमारी संस्कृति के लिए कितने आवश्यक है?
2: हमारे यहाँ मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, हमारे यहाँ धर्मोदय और ज्ञानोदय दोनों का स्थान होता था। मंदिरों के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ होता था, उनके साथ शिक्षा व्यवस्थाएं भी होती थी, उनके साथ धर्म ग्रंथ भी जोड़े जाते थे, उनके साथ विद्वान जुड़े हुए होते थे, बहुत कुछ होता था, समाज कल्याण के भी काम होते थे। और समाज कल्याण जो है वो हमारे धर्म का आधार था, आज भी है। हम लोग दान और तप त्याग जो भारत की संस्कृति का भाग है वो किसी देश में नहीं है। तो मंदिर जो होते हैं, आप बहुत सारे मंदिरों में जाएंगी तो आप देखेंगी कि बहुत कुछ उत्कीर्ण है परंतु उसको डीकोड करने की भी आवश्यकता है। तो जितने भी म्यूजियम हमारे हैं उनको और अधिक एक्टिवेट किया जाना चाहिए, ये देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे देश का जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय यहाँ दिल्ली में ही जनपद पर है, बहुत कुछ एक्टिवेट करने की और ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हमें अपने संग्रहालयों को और अधिक पुष्ट करने की और अधिक ज्ञान से प्राणवंत करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि वो देश की आवश्यकता है। हम केवल ऐसा नहीं कि एक म्यूजियम में आप गए, आपने ये मूर्तियां देखी, ये पेंटिंग्स देखी, उसका आपने एक फिजिकल रूप देखा और फिजिकली समझ लिया, नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, आध्यात्मिकता है, दर्शन है, ज्ञान है। मूर्ति कोई एक सुंदर वैसे ही कोई पीस ऑफ आर्ट नहीं है, इट्स नॉट मेड बाय कनोइजर्स ओनली। कहीं किसी मूर्ति में आपको नाम नहीं मिलेगा स्कल्प्टर का, किसी मंदिर में नहीं मिलेगा कि स्कल्प्टर कौन था, वो मूर्तिकार जी जो प्राणवंत कर देते थे और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती थी, फिर भक्तों को उससे शक्ति मिलती थी। तो मंदिर हैं, ये सब कुछ हमारी देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि जापान में एक को नोबेल प्राइज मिला है फास्टिंग पर, ईटिंग द सेल्फी या कुछ करके कुछ टाइटल था। हमारे यहाँ व्रत उपवास की परंपरा इतनी प्राचीन है पर हम उसका साइंटिफिक रीजंस, उसका हमारे शरीर को क्या लाभ होगा उसको हम नहीं बता पा रहे हैं।
1: शायद वो कहीं खो के रह गए
2: हैं। खोए नहीं है, उनको हमें पुनः एक ऐसे पटल पर लाने की आवश्यकता है जहाँ दुनिया देखे। जैसे मैं एक रूसी सहेली से बात कर रही थी एकादशी के विषय में, बता रही थी, शी सेड बट आई फास्ट ऑन एकादशी, तो शी वाज सो हैप्पी, बहुत उसको प्रसन्नता हुई।

0: ताने में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत भक्त हैं, भारत के मित्र हैं, भारत के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं। और अधिक से अधिक यदि हम अपनी संस्कृति के विषय में लोगों को जागृत करें, उनकी इच्छा है, वो करना चाहिए।
1: यहाँ मुझे अंग्रेजी की एक बहुत खूबसूरत कहावत याद आ रही है। कहा जाता है, एजुकेशन इज दैट विच कंपेल्स यू टू थिंक, नॉट मेयरली द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। शब्द शायद थोड़े इधर उधर होंगे, लेकिन ले दे के बात एक ही है कि आगे की पीढ़ियों को एजुकेट करने की जरूरत है। उसका एक माध्यम हो गया मंदिर, एक माध्यम हो गया संग्रहालय, और एक माध्यम और है, विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे देश में स्थित है और दुनिया भर के विद्वानों को विद्वान बनाने में नालंदा का किसी ना किसी तरह से योगदान रहा है। आज फिर एक बार नालंदा की चर्चा उठती है जब हम संस्कृति की बात करते हैं, और डॉक्टर सच्चिदानंद, आपके विचार मैं इस पे जानना चाहूंगी।
2: हम जानते हैं कि जब प्राचीन भारत के समय में भारत के विश्वविद्यालय ऐसे हुआ करते थे जहां पूरे विश्व से लोग आते थे, चाहे वो नालंदा हो, चाहे तक्षशिला हो, चाहे वल्लभी हो, चाहे उज्जैनी हो, तमाम विश्वविद्यालयों में पूरे विश्व से लोग आए, उन्होंने पढ़ाई की। और बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, कहीं 20,000, कहीं 50,000, इस तरह के वहां पर विद्यार्थी हुआ करते थे। और जब आप आज भी नालंदा के वो खंडहर देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये इतना विस्तृत, इतना बड़ा परिसर इसी विश्वविद्यालय का होगा, यानी कितने सारे यहाँ विद्यार्थी पढ़ते होंगे, किस किस तरह की यहाँ पर शिक्षा ली जाती होगी। तो ये हमारी जो हमारे ज्ञान परंपरा का ये वैभव रहा है। लेकिन ये भी सोचा गया कि जब हम हर बार बात करेंगे तो क्या हम हर बार नालंदा के खंडहर ही दिखाएंगे क्या आधुनिक भारत में, या सिर्फ हम बख्तियार खिलजी को ही कोसते रहेंगे कि उन्होंने ये सारा विध्वंस किया, या हम कुछ नवनिर्माण भी करना चाहते हैं, ज्ञान के नए केंद्र भी खोलना चाहते हैं, ऐसे केंद्र जहां पर ज्ञान की नई नई विधाओं का विस्तार हो, नई नई बातें वहां पर हो, नई नई चर्चाएं वहां हो। इसलिए आपने देखा कि आज जो नालंदा विश्वविद्यालय बना है वो अपने आप में एक नया विश्व के लिए एक नया प्रतिमान बना है, एक अपने आप में एक अपना एक स्टैंडर्ड उसने स्थापित कर दिया कि ऐसी वास्तु, ऐसा भव्य परिसर, ऐसी सुंदर वहां सुविधाएं कि वहां कोई भी शोधार्थी, कोई भी ज्ञानार्जन के लिए गया हुआ व्यक्ति अपने आप को उसके साथ जोड़ सके, उस पूरे परिसर की उसकी जो ध्वनि है, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, उसका जो स्पंदन है, उसके साथ वो जोड़ सके। इसलिए वो पूरा विश्वविद्यालय उस तरह से है। और वहाँ पे फिर नए नए विषयों के ऊपर शोध, नए नए विषयों के ऊपर नवाचार, ये सारी बातें वहाँ हो रही। और सिर्फ नालंदा का ही विषय नहीं है, देश में आज IITs की संख्या कितनी हो गई। आप जानते हैं आज से कुछ समय पहले तक सिर्फ 5 या 6 IITs हुआ करते थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की भी संख्या बहुत सीमित थी। आप जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी बहुत सीमित संख्या में हुआ करते थे। आज देश में कितने सारे IITs खुल गए हैं, कितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैं, कितने एम्स खुल गए हैं, इसके साथ ही आईसर, सोशल साइंस रिसर्च और साइंस रिसर्च, इस पर भी पढ़ाई करवाने के लिए संस्थान खुल गए हैं, जहां वहां पे एक नई तरह की पढ़ाई हो रही है। टेक्नोलॉजी के लिए IIIT कितने सारे खुल गए हैं ताकि टेक्नोलॉजी की बात हो और श्रेष्ठतम बातों के ऊपर चर्चा हो, आधुनिकतम ज्ञान की चर्चा हो। कौन था, आप देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल 15 अगस्त को एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की कि भारत सेमीकंडक्टर की फील्ड में जाएगा, अपने चिप का निर्माण करेगा। कब सोचा था हमने कि भारत अपने चिप का निर्माण करेगा? आज आप जानते हैं 140 करोड़ का हमारा देश है। सबसे बड़ी लड़ाई पूरे विश्व में आज जो हो रही है वो डिजिटल डेटा की हो रही है। डेटा पे जिसका प्रभुत्व होगा वो पूरे विश्व पर राज करने वाला है, हम आप सब देखते हैं। तो आज भारत ने ये सोचा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हम अगर सेमीकंडक्टर का निर्माण करेंगे, चिप बनाएंगे, तो डेटा हमारा होगा, डेटा पर प्रभुत्व हमारा होगा, तो फिर हम पर कोई राज नहीं कर सकता, फिर हम दुनिया पर राज करेंगे।
1: बिल्कुल।
2: तो ये जो एक शिक्षा का एक, ये जो एक नवाचार है, इसको सोचने की जरूरत है। सिर्फ विश्वविद्यालय खोलना नहीं, विश्वविद्यालयों में कौन सा ज्ञान दिया जाएगा, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको एक तरह से सारे ज्ञान का अमलगमीशन कराती है। भारतीय ज्ञान परंपरा भी है और आधुनिकतम ज्ञान भी है, दोनों को साथ लेके चलती है। वहां आपको संस्कृति का ज्ञान भी है, वहां पर विज्ञान का भी ज्ञान है। तो जिस तरह से भारत की पुरानी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, जहां पर हम एक संपूर्ण विकास, विद्यार्थी के संपूर्ण विकास की बात करते थे, होलिस्टिक डेवलपमेंट की, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर हम उस होलिस्टिक डेवलपमेंट को पाना चाहते हैं। इसलिए हम हमारे शैक्षणिक संस्थानों को भी सुदृढ़ कर रहे हैं।
1: मेरा ख्याल है हर विषय को एक जगह मिल गई है हमारे विश्वविद्यालयों में, जो कि पहले भी हमारी संस्कृति का हिस्सा था, पहले भी परफॉर्मिंग आर्ट्स की शिक्षा दी जाती थी, चाहे कोई भी राजा हो, महाराजा हो, रानी हो, एक क्योंकि अगर एक किंगडम किसी को चलाना है उसे हर तरीके का ज्ञान होना चाहिए।
2: नहीं, वैसा ही नहीं है। देखिए, कंपार्टमेंटलाइजेशन खत्म हो गया। पहले अगर कोई बच्चा या बच्ची मेडिसिन का कोर्स कर रहा है तो फिर उसको इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो संगीत का एक ऑप्शनल ले ले या विजुअल आर्ट का कोई ऑप्शनल ले ले। आज ये सुविधा है ना कि सिर्फ आप कंपार्टमेंटलाइज नहीं है, आप सिर्फ मेडिसिन के विद्यार्थी नहीं है, आप संगीत भी सीख रहे हैं, आप विजुअल आर्ट भी सीख रहे हैं, आप सिरेमिक्स भी सीख रहे हैं, आप सिर्फ इंजीनियरिंग के विद्यार्थी नहीं है, आपको लगता है तो आप थोड़ा सा साहित्य का भी पढ़ रहे हैं कुछ तो भी। यानी आप क्या कर रहे हैं, आपकी सारी ज्ञान की जो चक्षु है, ज्ञान की जो सारी दिशाएं हैं वो खुली रहना चाहिए। ये इतनी बड़ी बात है। आज भारत के पास पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा है और ये युवा ही हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है। आप भी जानते हैं कि अगर ये युवा सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, प्रेरित होंगे, तो ये पूरे विश्व पर एक तरह से अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं। तो इसलिए उन युवाओं को श्रेष्ठतम अवसर प्राप्त हो, ये बात हमने जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सोची और माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर नए नए कोर्सेज की बात करके, नवाचार की बात करके उनको इस दिशा में काम करने के लिए भी प्रेरित किया।
1: एक सवाल मेरा आप दोनों से है और वो ये है, रण उत्सव जैसे उत्सव जो हैं वो जीवन संस्कृति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, तो अगर मैं अपने देश के बाकी राज्यों की भाषाओं को, उनकी जीवन शैली को अपनाने की कोशिश करूं या फिर केवल समझने की कोशिश करूं, क्या वो मुझमें राष्ट्रीय जुड़ाव की एक अधिक भावना जागरूक कर सकता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: भारत में ये देखा जाता है, हम लोग भारतीय जहाँ भी जाते हैं कहते हैं मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं तमिल हूँ, परंतु हम सब भारतीय हैं, ये विलक्षण बात है। उसके पीछे बहुत सारा आधार है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, संपूर्ण भारत ज्ञान संस्कृति और बहुत सारे संस्कृति के आयाम उनके माध्यम से एक है। स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, हम लोग बहुत सारे उत्सव मनाते हैं, स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, अनेक उत्सवों का उदाहरण आपको दिया जा सकता है
1: जी।
0: तो भारत कभी भी बटा हुआ नहीं था और भारत की आत्मा उसकी संस्कृति है, उसका ज्ञान है, जिसके आधार पर भारत भारत है। और मैं तो एक बात और कहती हूँ कि लोग मुझसे कहते हैं अरे इंडिया कहा या भारत कहा तो क्या फर्क पड़ता है, मैं कहती हूँ नहीं। फिर आज हम केवल नालंदा, तक्षशिला, उदयपुरी, विक्रमशिला इत्यादि थोड़े से जो हमें पता है उन विश्वविद्यालयों की चर्चा करते हैं, परंतु आप थोड़ा सा इतिहास के पन्ने उलटकर देखिए कि भारत में जो विज्ञान था, जो वैज्ञानिक दिए वो किसने दिए, वो आश्रमों और गुरुकुलों ने दिए। जब अंग्रेज आए, ये तो हमारी प्राचीन परंपराएं रही, अंग्रेज आए तो उन्होंने सबसे पहले गुरुकुल सिस्टम खत्म किया। उस समय पूरा भारत 100% शिक्षित था, आज हम कहते हैं प्रतिशत ढूंढते हैं कितना भारत कितने प्रतिशत शिक्षित है, तो एक सारी व्यवस्था जो है उसको बदल दिया गया। आज हम कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग और उसकी बहुत सारी बातें चर्चाएं करते हैं, परंतु गुरुकुल में जब विद्यार्थी जाता था तो पहले उसका पूरा टेस्ट लिया जाता था। हम कहते हैं द्विज जो विद्यार्थी होता था उसको कुछ समय आचार्य केवल अपने मन में रखता था कि ये इसके अंदर क्या योग्यता है और यथा योग्यता के अनुसार मुझे इसको किस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। तो वो उस समय था, आज भारत में उसके लिए हमें बहुत कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं। जो उस समय की व्यवस्थाएं थी वो चरमरा गई या समाप्त कर दी गई, कुछ भी कह सकते हैं। तो भारत का वैज्ञानिक योगदान हमारे गुरुकुलों और आश्रमों से भी आया है। विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे, गुरुकुल और आश्रमों की हम लोग चर्चा नहीं कर पाते हैं। आज यदि हमें अपने बच्चे को गुरुकुल या आश्रम में भेजना है तो हम सोचने में पड़ जाते हैं, परंतु उस व्यवस्था के प्रति हमारे मन में आदर तभी आएगा जब हम उनके इतिहास के विषय में जानेंगे।
2: ये जो आपने भाषा की बात कही उसमें मैं दो चीजें जोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि वो आज की चर्चा के लिए शायद वो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये विचार आया माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में।
1: मैं इसी का जिक्र करने वाली थी, पहले हम कहा करते थे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी।
2: हाँ, नहीं नहीं, उन्होंने क्या किया उसमें, देखिए कि उन्होंने युग्म बनाए, दो दो राज्यों की युग्म बनाए। अगर आप गुजरात है तो गुजरात के साथ पांडिचेरी है, पश्चिम बंगाल है तो उसके साथ तमिलनाडु। यानी क्या किया कि इन प्रांतों के बीच में आपस में मेल जोल बढ़े, इन प्रांतों के लोग आपस में मिले, एक दूसरे के साथ बात करें, संवाद करें, कार्यक्रम आयोजित करें, तो उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को जानने की बात होगी। फिर काशी तमिल संगम प्रारंभ किया। ये काशी तमिल संगम अपने आप में एक बहुत ही अभिनव योजना थी, क्योंकि जैसे तीर्थ यात्रा के लिए तमिलनाडु के लोगों का काशी आना या काशी के लोगों का तमिलनाडु या अन्य दक्षिण प्रांतों में जाना एक आम बात थी, लेकिन एक दूसरे की संस्कृति को जानना, एक दूसरे की परंपराओं को जानना, साथ में रहकर उत्सव मनाना, ये पिछले कुछ सालों से काशी तमिल संगम के रूप में काशी में प्रारंभ किया गया और उसमें इतनी अपार सफलता मिली। बहुत सारी बातें लोगों को काशी तमिल संगम के माध्यम से सीखने को मिली।

0: अलग अलग नवाचार करके देश को एकता के सूत्र में फिर से मजबूती से बांधे रखना, या तीन भाषा का अभी जो एक सूत्र आया है जिसमें तीन भाषाएं पढ़ना विद्यार्थी को अनिवार्य है, उसके आधार पर वो विद्यार्थी अपनी एक मातृभाषा भी ले सकता है, एक अन्य भारतीय भाषा भी ले सकता है, इसके आधार पर पढ़ाई करेगा विद्यार्थी, या मातृभाषा में शिक्षा भी, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की तो मातृभाषा में शिक्षा करना, इंजीनियरिंग के भी कोर्सेस मातृभाषा में हो रहे हैं, मेडिकल के भी कोर्सेस मातृभाषा में हो रहे हैं, यानी आप देखिए कि हम कहां से कहां सोच है, इस बारे में विचार करना चाहिए था कि अब हमने अपने आप को कहां तक पहुंचा दिया है।
1: एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था, इसलिए आज सरदार पटेल की जयंती का दिन स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता का महापर्व बन गया है। जिस तरह हम 140 करोड़ देशवासी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वैसे ही एकता दिवस का महत्व हमारे लिए प्रेरणा की पल है, गर्व की पल है।
2: जी, और इसी में एक बात मैं ये जोड़ना चाहूंगी, प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद ने ये कहा था कि द बेसिस ऑफ लिटरेचर इज लाइफ। सो जैसा हम जीवन को परखेंगे, देखेंगे, जानेंगे, अपनी संस्कृति को जानेंगे, वैसा ही हमारा साहित्य होगा। संस्कृति एक ऐसा शब्द है जिसकी कड़ी और कई विचारों से और शब्दों से जोड़ी जा सकती है। पहला सवाल जो है वो पीपल्स पद्मा पर है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि पीपल्स पद्मा लोगों का ध्यान केवल प्रसिद्ध व्यक्तियों से हटाकर उन लोगों की ओर ले जाता है जो समुदाय में चुपचाप महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और दूसरा विचार ये है कि अगर हमारी सांस्कृतिक विरासत हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई है तो उसके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है, और इसे किस तरह हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचा सकते हैं?
0: देखिए, पीपल्स पद्मा की जो बात आपने कही, अभी तक ये जो राष्ट्रीय अलंकरण होते थे, चाहे वो हमारे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारे जो थे, ऐसा लोगों को लगता था कि एक निश्चित अभिजात्य वर्ग के लोगों तक ही वो सीमित थे, क्योंकि उनकी जो चयन प्रक्रिया थी वो भी बहुत पारदर्शी नहीं थी, और फिर जो लोग चुने जाते थे, बहुत बार ये धारणा होती थी कि अच्छा इनको तो मिलना ही था क्योंकि ये एक उस अभिजात्य वर्ग से आते हैं। तो ये एक सामान्य लोगों से बिल्कुल कट के ये राष्ट्रीय अलंकरण रह गए थे। इसका जब से लोकतांत्रिकरण हुआ, आवेदन मंगाए जाने लगे, पोर्टल पे आवेदन आने लगे, और लोगों से कहा गया कि आप अपना आवेदन ऐसे व्यक्ति का भी नॉमिनेट कर सकते हैं जिन्होंने समाज के क्षेत्र में कुछ किया है, और ऐसे में हमने देखा कि ऐसे ऐसे समाज के क्षेत्र के लोग जो अपने कहीं दूर किसी अंचल में बैठकर अपना काम कर रहे हैं, जैसे बीज बचाने का काम करने वाली कोई हमारी माई हैं जो हमारे मौलिक बीजों को बचा रही हैं कृषि के लिए, ताकि हमारी जो मौलिक फसल है वो आगे जिंदा रहे, या कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल अपने सीमित संसाधनों से एक लाइब्रेरी का निर्माण कर रहे हैं, मतलब किसी को पेंशन मिली है वो पूरी की पूरी पेंशन झोंक के पब्लिक लाइब्रेरी बना रहे हैं, या कोई है जो हमारी पारंपरिक दवाइयों को अपने खर्चे पे ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिनके पास चिकित्सा की सुविधा नहीं पहुंची। ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढना जब शुरू किया गया और खोजा गया कि भाई ऐसे लोग जिनके पास कई बार पैर में पहनने की चप्पल तक नहीं है, वो लोग अपने पूरा का पूरा जीवन दूसरे के उत्कर्ष में लगा रहे हैं, तो क्या ये अच्छे देश का ये कर्तव्य नहीं कि हम उनको सम्मानित करें, हम उनको जनता के प्रकाश में लाएं कि जनता देखे उनको कि ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में। तो ये पीपल्स पद्मा की जो अवधारणा आई, और इसकी प्रक्रिया में हमने देखा कि एक ऐसा व्यापक समुदाय जुड़ा और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हाँ, ये हैं हमारे सही हीरोज, ये हैं हमारे राष्ट्र के नायक जिनका अनुकरण हमें करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी पहल, और इसलिए आप देख रहे हैं कि हर साल पद्मा के लिए नॉमिनेट करने वालों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे तमाम लोग उसमें रुचि ले रहे हैं। अब जो लोग हमारे पद्मा अवार्ड विनर्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में हैं, अब समाज में उनके प्रति देखने का नजरिया एकदम बदल गया है, एक अलग तरह का सम्मान है, और न सिर्फ उन अवार्डीज के प्रति बल्कि ऐसे अनेक लोग जो काम कर रहे हैं उनके प्रति भी समाज का एक बहुत सकारात्मक, बहुत सम्मानजनक नजरिया हो गया।
2: जी डॉक्टर शशि, आप क्या कहेंगी?
3: जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले हम प्रसिद्ध लोगों को प्रसिद्ध कर रहे थे, अब हम समुद्र मंथन कर रहे हैं। समाज का आलोडन होता है और उसमें जो सेल्फ नॉमिनेशन है उसको भी एड कर दिया गया है, जिससे कि ये आत्मस्तुति नहीं है, परंतु व्यक्ति ने यदि कोई कार्य किया है तो देश के समक्ष आने का एक साधन बना है। तो इससे क्या है कि अनेक प्रकार के लोग जो अनजाने हैं, जिनको कोई जानता नहीं, जिनके कार्य को कोई नहीं जानता, वो उनके नाम

0: उभर कर आ रहे हैं और उनको उससे मनोबल मिलता है। वो कोई एकमात्र अलंकरण नहीं होता, उससे व्यक्ति को मनोबल इतना मिलता है कि अच्छा मुझे इस कार्य के लिए इतना बड़ा सम्मान दिया गया, अब मेरे ऊपर और बहुत बड़ा दायित्व आ गया है, मुझे और बढ़ चढ़ कर ये कार्य करना है, तो वो और बढ़कर करता है। दूसरा आपने प्रश्न किया संस्कृति के विषय में, संस्कृति का अध्ययन जो है वो भी हमारी पीढ़ी को और करना पड़ेगा, हमारे से अगली पीढ़ी और उससे अगली पीढ़ी भी आ गई है। तो मैं जहां जहां जाती हूँ देखती हूँ तो मुझे ये ऐसा अनुभव होता है कि संस्कृति का अध्ययन करके ठीक से लॉजिकली और एक ज्ञान के आधार पर हम बच्चों को देंगे तो बच्चे तैयार हैं, अगली पीढ़ी तैयार है। यदि हमने नहीं दिया तो हम चूक जाएंगे, बहुत सा ज्ञान विस्मृत हो जाएगा।
1: 2022 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण की घोषणा की थी उसमें एक प्रण था अपनी विरासत पर गर्व
0: जी।
1: तो यही मुझे लगता है कि बॉटम लाइन है, यही सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी विरासत पर गर्व करें और अपनी पीढ़ी को भी एक ऐसा वातावरण दें कि वो भी अपनी विरासत पर गर्व कर सके, तो वो संस्कृति को आगे ले जाएंगी।
0: और वो विरासत पर गर्व तब होगा जब हमें उसकी महानता का ज्ञान होगा।
2: शायद हमारा एक गोल, हमारा एक इंटेंशन इस चर्चा के जरिए वही था कि अपनी विरासत की महानता को सामने लाया जाए। ये हमारी स्पेशल सीरीज है जन सेवा से देश सेवा, और संस्कृति के कई ऐसे विचार हैं जो शायद अगली वार्तालाप में हम जिनका जिक्र करेंगे। फिलहाल आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 24वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, भारत की विरासत, संस्कृति और आत्मविश्वास। इसमें भाग ले रहे थे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और भारतीय विद्या भवन के डीन प्रोफेसर डॉक्टर शशि बाला। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി പൊതുസേവനത്തിന്റെ 25 വർഷം തികയ്ക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കേന്ദ്ര വാർത്താ വിഭാഗം തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ച പ്രത്യേക പരമ്പരയുടെ ശബ്ദലേഖനമാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത്. ആകാശവാണി കാലാവസ്ഥാ അറിയിപ്പ്. തിരുവനന്തപുരത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ആകാശം ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായിരിക്കും. ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മഴയോ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ അറിയിപ്പാണ് കേട്ടത്. ഇപ്പോൾ സമയം 11 മണി കഴിഞ്ഞ് 34 മിനിറ്റും 50 സെക്കൻഡും. ഈ നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇന്നത്തെ പ്രക്ഷേപണം സമാപിക്കുന്നു. അടുത്ത പ്രക്ഷേപണം നാളെ രാവിലെ 5:48 ആരംഭിക്കും. ഇനി ന്യൂസ് ഓണെയർ ആപ്പ് വഴി FM Gold പരിപാടികൾ തുടർന്ന് കേൾക്കാം. എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും ശുഭരാത്രി. ജയ് ഹിന്ദ്.
5: Andhra Pradesh and Odisha to fast track value addition for key battery materials.
6: 2 अक्टूबर को समाप्त विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 13 अरब अमरीकी डॉलर से घटकर 734.6 अरब अमरीकी डॉलर हो गया है. भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस सप्ताह भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा यानी विदेशी मुद्रा पूंजी लगभग 10.5 अरब अमरीकी डॉलर से लुढ़ककर 604.7 अरब अमरीकी डॉलर रह गया है. सोने का भंडार 2.2 अरब अमरीकी डॉलर से कम होकर 106.4 अरब अमरीकी डॉलर के स्तर पर आ गया है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास

0: की डॉलर के स्तर पर दर्ज है। और इसी बीच दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं। केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। कृपया अपना सवाल पूछिए, मगर संक्षेप में, क्योंकि समय की बाध्यता है।
1: जी धन्यवाद कॉलेज। नमस्कार, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे एक हमारा सेविंग अकाउंट है, उसमें अगर एफडी मैच्योर होने के बाद अगर जो पेमेंट है ज्यादा होती है, तो ये बैंक में, अगर बैंक अपने ही बैंक में 5 लाख के ऊपर कोई एक फॉर्म भरा जाता है, ये क्या नियम है इसके ऊपर? क्योंकि अभी लास्ट टाइम हमसे एक फॉर्म भरवाया गया था जो ट्रांसफर

0: पेमेंट तो हमारा हमारी परमिशन फॉर्म होता है, ये क्या क्या चीज का होता है,
1: अच्छा
0: लकी
1: ये
0: पेमेंट हम ले जा सकते हैं?
1: देखिए केशव जी, जो लार्ज पेमेंट्स होती है उसको जब ट्रांसफर किया जाता है तो अब नए नियमों के अंतर्गत वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, और उसकी उसकी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के लिए जो बड़ी पेमेंट्स होती है 5 लाख से ऊपर, उस पर जनरली बैंक से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आजकल तो आप चेक भी बड़ा इशू करें
0: जी
1: तो आपको बैंक से पहले उसको उसको प्री ऑथराइज करना पड़ता है, वरना वो चेक क्लियर नहीं होता। तो लार्ज पेमेंट्स पे आगे फ्रॉड को रोकने के लिए और उसकी ट्रैकिंग के लिए मुझे लगता है इसमें अल्टी थोड़ा सा हैसल तो होता है, पर कस्टमर्स की सेफ्टी के लिए।
2: आगे बढ़ते हैं। नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट प्रारूप इस महीने की 15 तारीख से लागू होगा। नए प्रारूप के अंतर्गत ₹2,000 तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई लेन देन पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोल पंप पर यूपीआई से फ्यूल खरीदने पर एमडीआर कैसे काम करता है, तो मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के अनुसार पेट्रोल पंप पर यूपीआई से फ्यूल खरीदने पर ₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट के लिए ₹5 की फ्लैट रियायती दर लागू होती है। ₹5 की फ्लैट फीस पेट्रोल पंप ऑपरेटरों को टैंक रिफिल करवाने पर ज्यादा लगने वाली प्रोसेसिंग फीस से बचाती है। ₹2,000 से कम के सभी फ्यूल भुगतान पर शून्य एमडीआर रहता है।
3: Let's move on. The Reserve Bank of India, RBI, has said that the banks will need to maintain 99% of the required cash reserve ratio, CRR, daily, starting from October 16th, up from 90% at present. The move follows a review of the current liquidity condition in the banking system and will help reduce the banking system liquidity, which stood at a surplus of around 3.88 lakh crore rupees as of October 20th. October 8th. A very, very quick comment from you.
1: I think as far as the next week's market is concerned, I think if we quickly comment on that, I think the market will wait for what is going to happen on the bond yields. If this again start rising, and the developments in West Asia, of course, will be paramount.
2: Right. Sharad ji, karyakram mein bhaag lene ke liye aapka bahut bahut dhanyawad.
1: Dhanyawad, thank you so much.
3: And before we close, a reminder of the headlines. Indian stock markets snap their 8-week losing streak. Sensex and Nifty gains around 0.5%. Wall Street wraps up week with notable gains, and global crude oil prices rise during the week. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow, and do remember, listeners, that tomorrow is the day when we will be taking calls from you on any queries that you may have on mutual funds. So do call us then. Till then, from the entire team, goodbye.
2: Namaskar.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

11:40 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर स्वागत है आप सबका प्रोग्राम गीत मेरे मन में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हैं आप और घड़ी बता रही है कि बस अब विकास अलविदा कहने का वक्त है। घड़ी बता रही है कि थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार और समाचारों के बाद एक बार फिर जुड़िए और जुड़े रहिएगा एफएम गोल्ड के साथ। आपके साथ होंगी जयती।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है। देश भर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले साल आज ही के दिन यह योजना शुरू की गई थी। पिछले वर्ष जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस 6 वर्षीय पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 11 अक्टूबर को की थी। इस योजना के तहत जिलों की विशेष कृषि आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ ही राज्यों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर चालक रहित परिचालन को बढ़ावा देने के लिए तैयार उन्नत सिग्नल प्रणाली के साथ 3.7 किलोमीटर की डबल डेकर वाली संरचना है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री समुद्री अवसंरचना को सशक्त बनाने का

0: तमिलनाडु में बंदरगाह से संबंधी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तफ्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हॉल में घुस गए और नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली पुलिस यातायात परामर्श जारी किया है। सुबह 6 बजे से नई दिल्ली की ओर जाने वाली शंकर रोड, वंदे मातरम, टी गोल चक्कर, झंडेवाला पचकुइया मार्ग, गोल डाक खाना, पटेल चौक, मंडी हाउस, भैरो रिंग रोड, टी पॉइंट और लोदी रोड फ्लाईओवर सहित विभिन्न रास्तों पर आवाजाही प्रभावित हो सकती है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिबके की दादी के निधन और उनके अंतिम संस्कार के समय की जानकारी तुरंत उनके साथ साझा की गई थी। मानवीय आधार पर दिबके को उनके गृह नगर जाने के लिए हर संभव सहायता और सुविधा की पेशकश भी की गई थी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र भी
0: इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आवाज की दुनिया के दोस्तों, रश्मि कुकरेती का नमस्कार। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। ये कार्यक्रम है पानी पर लिखी कहानी। आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं मंजू बत्रा की लिखी कहानी, तो आइए सुनते हैं।
1: पानी पर लिखी कहानी में आज मैं सुनाने जा रही हूँ अपनी ही लिखी कहानी मेट्रो।

ये रविवार की अलसाई हुई दोपहर का वक्त है। छुट्टी के दिन मैथ्स में इतनी सख्ती नहीं रहती जितनी कि वीक डेज में होती है। वैभव ने प्लेट में अपनी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी, राइस, अचार और साइड में दो रोटियां भी रखी थी। विंडो से मसूरी की खूबसूरती उसके दिल और दिमाग में उतरती जा रही थी। पहाड़ों पर उतरता आसमान, चीड़ के पेड़ों पर जमी बर्फ, ढलान भरे रास्ते, हरा कंबल ओढ़े पेड़, घुमावदार सड़कें, सब कुछ ऐसा था जैसे बड़े कैनवस पर किसी चित्रकार ने प्रकृति की तस्वीर उतार दी हो। मसूरी की हसीन वादियां वैभव को बचपन में वैभव के फादर समर वेकेशन में उसे जब मसूरी लाए थे तब उसने इन्हीं खूबसूरत वादियों को कैनवस पर उतार दिया था। कितना खुश हुए थे पापा और अप्रिशिएट करते हुए कहा था, वेल डन माय बॉय, और इनाम में 100 का नोट भी थमा था। पापा तारीफ के मामले में बहुत कंजूस थे। हाँ, डांट बहुत जल्दी देते थे। पापा से तारीफ का मतलब था शर्ट का कॉलर ऊपर करके घर के और लोगों पर भी रौब झाड़ा जा सकता है। वैभव के फादर आर्मी ऑफिसर थे जो पुलवामा अटैक में मारे गए थे। उनके जाने के बाद घर कितना सूना हो गया था और घर से भी ज़्यादा सूनी हो गई थी मम्मी की आंखें। वो चमक, वो उम्मीद कहाँ गुम हो गई थी जो पापा को देखकर, पापा की यूनिफॉर्म को देखकर मम्मी की आंखों में आती थी। पापा ऐसी जगह क्यों चले गए थे जहाँ से उनकी कोई आवाज़ तक नहीं आती थी।

मम्मी कभी भी वैभव को यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली नहीं भेजना चाहती थी, पर वैभव के सर पर तो मानो कोई भूत सवार हो गया था। उसे है ही कौन, अगर तुझे भी कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? बोल, दिल्ली इतना बड़ा शहर है, वहां कौन रखेगा तेरा ख्याल? कौन है वहां जिसे तू अपना कह सके? मम्मी ने झुंझलाते हुए कहा था। लंबी गहरी सांस भरने के बाद वैभव ने भी कह दिया था, जिस शहर में मेरे पापा का नाम नेशनल वॉर मेमोरियल पर लिखा हो, वहां मैं अकेला कैसे हो सकता हूँ मम्मी? इतने वजनदार जवाब के बाद मम्मी ने वैभव को आने के बाद वैभव ने एक छोटा ही सही पर सिंगल सीटर पीजी रेंट पर ले लिया था। उसने यूपीएससी एग्जाम की बारीकियों को समझने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लिया था। वो रात भर पढ़ाई करता, पर जब शाम को मम्मी से फोन पर बात करता तो उसका गला भर आता।

वैभव को दिल्ली आए हुए महीने भर से ऊपर हो गया था, पर वैभव अभी तक एक भी फ्रेंड नहीं बना पाया था। नॉलेज के मामले में, हॉबीज के मामले में उसका टेस्ट किसी से मैच ही नहीं करता, तो उसमें वो क्या करे। उसने भी दोस्त से लौटते हुए रास्ते में

किसी ने पैम्फलेट पकड़ा दिया था। उसने पैम्फलेट को पढ़ा। कोई फाइन आर्ट एकेडमी 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करवा रही थी। संडे संडे क्लास होगी। क्लास की 2 शिफ्ट होंगी, मॉर्निंग बैच 10 से 12 और इवनिंग बैच 5 से 7। वैभव को अकेलापन सोख लिया था। वो पढ़ाई के साथ जिंदगी भी रंगना चाहता था। वो फिर उसने तुरंत पैम्फलेट में लिखे कॉन्टैक्ट नंबर पर फोन कर अपना रजिस्ट्रेशन भी करा दिया। उसे अकेले चलते हुए भी सहारा दिखाई दे रहा।

आज पेंटिंग क्लास का फर्स्ट डे था। मैम ने सभी स्टूडेंट्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेने के बाद आई स्केच ड्रॉ करना सिखाया और अगले एक घंटे उन्हें जो भी आंखें सबसे सुंदर लगती है उसका स्केच बनाने के लिए कहा। आंखों के नाम पर वैभव के पास अपनी माँ की आंखें ही थी। जब वो पापा के गले लगती और उनके मेडल्स पर हाथ फेरती तो एक अजीब सी चमक उन आंखों में उतर आती थी। उन आंखों की चमक को वैभव ने ड्राइंग नोटबुक में उतार दिया। मैम को उसका आई स्केच सबसे ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने खड़े होकर पूरी क्लास के सामने वैभव के लिए क्लैपिंग की और कहा, वेल डन माई बॉय। आज उसे पापा की बहुत याद आ रही थी। जब भी वो कोई अच्छी पेंटिंग बनाता पापा उसकी हमेशा पीठ थपथपाते और कहते, वेल डन माई बॉय। आज वो बताना चाहता था कि किसी और ने भी उसकी पेंटिंग की तारीफ की है और वेल डन माई बॉय कहा है। वो अपनी खुशी बांटना चाहता था, वो मम्मी को बताना चाहता था, पर वो जानता था कि मम्मी उसकी खुशी में तो शामिल हो जाएंगी लेकिन पापा का जिक्र छिड़ने के बाद पूरी रात उनकी फोटो फ्रेम को गले से लगाए रोती रहेंगी। कैसा शहर है दिल्ली, जहाँ खुशी और गम दोनों अकेले ही निगल जाने होते हैं। हमने तो सुना था कि दिल्ली दिलवालों की है।

मेट्रो में वैभव दो सुंदर आंखों के पीछे खींचा चला आता है। कितनी सुंदर आंखें थी वो, गोल गोल।

काम है मेरा, IAS की तैयारी कर रहा हूँ। इसके साथ मैं संडे को फाइन आर्ट क्लास भी लेता हूँ और आज फाइन आर्ट क्लास में मुझे बेस्ट आइज स्केच का प्राइज भी मिला है। वैभव ने बैग खोलकर आरोही को अपना आई स्केच दिखाया। आरोही का गुस्सा भी लगभग गायब हो गया था क्योंकि वो मानती थी कलाकार खुश होती है। कुछ था वैभव की ड्रॉ की हुई आईज में, वो खुद भी खो गई थी उन एक जोड़ी आंखों में। किसकी आंखें हैं ये? आरोही की आंखें हैं, वैभव ने कहा। बहुत सुंदर आंखें हैं, आरोही ने ड्राइंग बुक पर हाथ फेरते हुए कहा। थैंक यू, अपनी ड्राइंग नोटबुक को वापस देते हुए वैभव ने कहा। सॉरी वैभव, तुम्हारी ड्राइंग बुक हुई बाहर बारिश हो रही थी ना, इसलिए मेरा ओवरकोट भी गीला हो गया है। मेरे गीले कोट की वजह से तुम्हारी आइस पेंटिंग खराब हो गई है। सॉरी वैभव, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, वैभव ने लंबी और गहरी सांस खींचते हुए कहा। मतलब तुम नहीं समझोगी, कहकर वैभव अपने मोबाइल में कोई तस्वीर देखने लगा। तभी अनाउंसमेंट हुई, अगला मेट्रो स्टेशन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। आरोही अपना मोबाइल और भी जल्दी को सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पर उतरना था। तो आप कौन सी वाली मेट्रो लेंगी? वैभव ने पूछा। समयपुर बादली वाली। और आप? हुड्डा सिटी सेंटर वाली, वैभव ने जवाब दिया। यानी हम ऑपोजिट डायरेक्शन के मुसाफिर हैं, वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ शायद, पर एक ही डायरेक्शन में जाने वाली मेट्रो के मुसाफिर एक ही मंजिल तक पहुंच रखते होने से पहले कॉफी हो जाए। और आप बारिश में भीगी भी हुई हैं। देखिए मैं भी कितना बुद्धू लड़का हूँ, कितनी देर से आपसे बातें कर रहा हूँ और आपसे अभी तक आपका नाम तक नहीं पूछा मैंने। नाम पूछे जाने पर आरोही ने तुरंत अपने दिमाग का कैलकुलेटर ऑन कर लिया। किसी अजनबी को फर्स्ट मीटिंग में अपना नाम और फोन नंबर बताना उसे खतरे से खाली नहीं लगा। वो लोगों का चक्कर में अपने नाम और फोन नंबर की वजह से कितनी ही मुश्किलों में फंसी थी। स्ट्रेंजर को अपना ओरिजिनल नाम और फोन नंबर कभी नहीं बताएगी। मैंने नाम पूछा है, आपकी बैंक डिटेल नहीं, वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक्चुअली मेन्यू देख रही थी। आकांक्षा, आकांक्षा नाम है क्या? फोन नंबर मांगने पर उसने वैभव को अपना वो नंबर दे दिया था जो हमेशा स्विच ऑफ रहता है। कॉफ़ी पीने के बाद दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन वाली मेट्रो लेकर अपने अपने रास्ते पर निकल गए। आज पहली बार वैभव को इस अजनबी शहर में किसी अजनबी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था।

नेक्स्ट संडे को रात 8 बजे वाली मेट्रो में वैभव को आरोही नजर आई। कुछ है इन आँखों में जिसे मैं इतनी भीड़ में भी पहचान लेता हूँ। आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा, कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ, बहरी हो गई हो क्या? आरोही ने नजरें ऊपर करके देखा, सामने वैभव खड़ा था। कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, सुनी नहीं रही हो? आरोही को आकांक्षा आकांक्षा चिल्लाने की आवाज़ तो बहुत देर से आ रही थी, पर वो क्या रिस्पॉन्स करती? वो तो आरोही थी, आकांक्षा तो सिर्फ उसकी कल्पनाओं में थी। सॉरी वैभव, मैंने कान में एयरफोन लगाया हुआ था इसलिए तुम्हारी आवाज़ को सुना ही नहीं मैंने। कैसे हो? बहुत बुरा। अच्छा बाबा, सॉरी। दिखाओ आज तुमने ड्राइंग नोटबुक में क्या क्या बनाया। और वैभव भी खुश होकर आरोही को अपनी पेंटिंग दिखाने लगा, उसे बताने लगा आज कोचिंग में क्या हुआ, ड्राइंग क्लास में क्या हुआ। दोनों ने कॉफ़ी पी और फिर मेट्रो की येलो लाइन से ऑपोजिट डायरेक्शन वाली मेट्रो में अपने घर के लिए निकल पड़े। डेली रूटीन की तरह संडे का भी एक रूटीन बन गया था। वैभव हर संडे मेट्रो पर आरोही का इंतज़ार करता। शायद ही कोई ऐसी बात हो जो वैभव ने आरोही को ना बताई हो। आरोही जानती थी कि वैभव उसे प्यार करने लगा है और वो भी उसे प्यार करने लगी थी। आरोही उसे कैसे समझाती कि वो आकांक्षा नहीं आरोही है और उसका मोबाइल नंबर वो नहीं है जो उसके पास है, बल्कि उसने तो अपना नंबर अभी तक उसे दिया ही नहीं। आरोही को लगने लगा कि वो वैभव को चीट कर रही है। वो सब कुछ साफ साफ बता देना चाहती थी पर उसे डर था कि कहीं वो वैभव को खो ना दे, वो उसे फ्रॉड ना समझ ले।

आरोही एक रेडियो जॉकी है जो हर संडे की शाम को 5 से 7 का स्लॉट करती है। ऑफिशियली ऑर्डर निकलता है और अब उसका स्लॉट और टाइम चेंज हो गया था। नए स्लॉट के हिसाब से अब उसे हर संडे रात 10 से 12 बजे का स्लॉट करना होगा। टाइम बदल जाने की वजह से आरोही ने मेट्रो से जाना छोड़ दिया था। उधर वैभव ने कई संडे शाम से लेकर रात रात भर उसका इंतजार किया और थक हार कर उसने अपने मन को समझा लिया था कि इस अजनबी शहर ने उसे एक बार फिर ठग लिया है। अपने इस गम को भी उसे अकेले ही निकल जाना था। वैभव का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपनी दुनिया सिर्फ घंटों पढ़ता। उसकी मेहनत रंग लाती है और उसका सिलेक्शन यूपीएससी में हो जाता है। उसे अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए मसूरी जाना होगा। वो दिल्ली को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहता था। वो कभी नहीं आना चाहता था इस शहर में, पर जाने से

पहले वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के कॉफ़ी कैफ़े पर जाकर एक बार कॉफ़ी पीना चाहता था और उन यादों को हमेशा के लिए फेंक आना चाहता था। उसने आरोही के ऊपर बनाए सारे स्केच भी अपने बैग में रख लिए थे। हर संडे जब वैभव आरोही से मिलता तो अपने पीजी पहुंचने के बाद उसका एक स्केच ज़रूर बनाता। उसने ये बात आरोही को कभी नहीं बताई थी। वो स्केच बंडल को भी अपने साथ ले गया। कॉफ़ी पीने के बाद उसने आरोही के फेस स्केच के बंडल को सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के कंट्रोल रूम में दे दिया था और कहा था इस शक्ल की लड़की यहाँ आए तो उसे ये दे देना, उसका नाम आकांक्षा है। एक स्केच के नीचे उसने अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया था। कितनी यादें थी इस मेट्रो स्टेशन की उसके मन में, कितना कुछ दिया था इस येल्लो लाइन ने, दोस्ती, खुशी, अपनापन, और फिर एक झटके में सब कुछ छीन भी लिया था वो इस मेट्रो स्टेशन से, इस शहर से, और शायद आरोही की जिंदगी से भी बहुत दूर जा रहा था कभी ना लौटने के लिए। उसे पहले ही मान लेना चाहिए था कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन के मुसाफिर हैं जो कभी नहीं मिल सकते। फिर क्यों वो कोशिश करता रहा दो जुदा राहों के मुसाफिरों को एक मंजिल पर पहुँचाने की।

एक दिन शॉपिंग से लौटते वक्त आरोही के मेट्रो कार्ड से एंट्री नहीं हो रही थी। पूछने पर पता चला कि टेक्निकल फॉल्ट है और कंट्रोल रूम में जाकर पूछना होगा। आरोही ने ध्यान दिया, ये तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन है, उसका सबसे फेवरेट मेट्रो स्टेशन, उसका प्यार वाला मेट्रो स्टेशन, उसके ख्वाब वाला मेट्रो स्टेशन। कंट्रोल रूम में जाने के बाद कंप्यूटर में कुछ चेक करने के बाद मेट्रो ऑफिसर ने कहा, नाउ इट्स वर्किंग मैम, थैंक यू। मेट्रो कार्ड लेते हुए आरोही ने कहा, आकांक्षा, आप आकांक्षा है ना? मेट्रो ऑफिसर ने कहा, हाँ, पर आप कैसे जानते हैं? कोई लड़का आपके फेस स्केच का ये बंडल दे गया था, उसी ने बताया था कि आपका नाम आकांक्षा है। आरोही की आंखें भर आई थी, वो बताना चाहती थी कि वो आकांक्षा नहीं बल्कि आरोही है, वैभव की आरोही। इतना प्यार था तो वैभव कभी कुछ कहा क्यों नहीं? बस स्केचेस में ढाल देने से या रंगों में उतार देने से प्यार का इजहार हो जाता है भला? कुछ तो कहा होता, कभी तो कहा होता। क्या कहा होता आरोही? तुमने तो वैभव को अपना नाम तक सही नहीं बताया था। कितनी बार वैभव ने पूछा, तुम्हें म्यूजिक से इतना प्यार क्यों है? इसके जवाब में कितनी आसानी से तुमने कह दिया था, आई एम ह्यूज म्यूजिक लवर, कितनी बुरी हूँ मैं, और मैं इतना बुरा ही डिजर्व करती हूँ। आरोही स्केचेस देखते हुए रो रही थी। उसने देखा कि एक स्केच पर वैभव का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। उसने जल्दी से नंबर भी डायल कर दिया। वो वैभव को फ़ोन करने ही वाली थी कि उसके मन में कई सवाल उठने लगे। अब वैभव IAS हो गया है, क्या उसे ये नहीं लगेगा कि मैंने उससे नहीं बल्कि उसकी पोजीशन से प्यार किया है, उसके रुतबे से प्यार किया है? उसे मैं लालची नहीं लगूंगी जब उसे पता चलेगा कि मैं आकांक्षा नहीं बल्कि आरोही हूँ? क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? उफ, ये WH फैमिली के सवाल कभी तो पीछा छोड़ो मेरा। हिम्मत करके आरोही ने डायल नंबर पर फ़ोन कर दिया। रिंग हो रही थी। हेलो, हेलो वैभव, मैं आरोही। कौन आरोही? आकांक्षा। ओ, मेट्रो वाली लड़की जिसकी आंखों पर मैं मरा जाता था और जिसने मुझे सच में मार भी दिया। सॉरी वैभव, पर मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, मैं रेडियो पर आकांक्षा के नाम से ही काम करती हूँ। तुम रेडियो जॉकी हो, ये बात भी तुमने मुझे कभी नहीं बताई। मैं बताना चाहती थी वैभव, पर अचानक मेरे शो का टाइम चेंज हो गया था और मैं लेट नाइट शो करने लगी थी। मैंने कई बार मेट्रो स्टेशन पर जाकर तुम्हारा इंतज़ार भी किया, पर तुम वहाँ नहीं थे। खैर छोड़ो इन बातों को, कांग्रेट्स वैभव IAS बनने के लिए। मुझे कांग्रेट्स कहने में तुमने 6 महीने लगा दिया आरोही। सॉरी वैभव, मेरे पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। क्यों होगा, तुमने कभी कोशिश ही नहीं की मेरे बारे में जानने की। वो तो मैं पागल था जो बिना सोचे समझे तुमसे प्यार करता रहा, तुम्हारी बातों पर विश्वास करता रहा। अब क्यों फ़ोन किया है तुमने मुझे? तुमने मुझे नहीं IAS वैभव को फ़ोन किया है। जब तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं था तो आज कहाँ से आ गया? मेरे पास तुम्हारे लिए कोई टाइम नहीं है आरोही, प्लीज़ लीव मी अलोन। वैभव लगातार बोल

बोलता जा रहा था और आरोही चुपचाप उसे सुनती जा रही थी। जब आरोही से सुना नहीं गया तो उसने जवाब दिया, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के कंट्रोल रूम में मिला है तुम्हारा नंबर। और हाँ, मैंने आईएएस वैभव को नहीं, उस वैभव को फ़ोन किया है जो मेरे स्केच बनाता था, जो मेरे फेस स्केच के बंडल में अपना दिल लपेट कर मेट्रो स्टेशन पर छोड़ आया था। मैंने तुम्हें चीट नहीं किया वैभव, मुझे पहले भी तुमसे प्यार था, आज भी है और शायद हमेशा रहेगा। मैं नेक्स्ट संडे उसी मेट्रो स्टेशन पर उसी वक्त तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, कहकर आरोही ने फ़ोन काट दिया। सब खाना हो गया हो तो प्लेट उठा लूँ, मैं सर्वेंट की आवाज़ से वैभव का फ्लैशबैक टूटा। वैभव ने टाइम देखा, दोपहर के 3:30 बज रहे थे। उसने तुरंत पैकिंग की और दिल्ली की फ़्लाइट लेकर आरोही से मिलने निकल पड़ा। मेट्रो वाली लड़की यानी आरोही वैभव का मेट्रो स्टेशन पर इंतज़ार कर रही थी। वैभव ने आरोही को बाहों में भर लिया। दो ऑपोजिट डायरेक्शन के मुसाफिर एक ही डायरेक्शन और एक ही मंजिल की ओर निकल पड़े थे।

दोस्तों, अभी मैं आपको सुना रही थी पानी पर लिखी कहानी में अपनी ही लिखी कहानी मेट्रो वाली लड़की। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति, परिकल्पना और निर्देशन है रश्मि कुकरेती का। इसके साथ ही मुझे यानी मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है। देश भर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले साल आज ही के दिन यह योजना शुरू की गई थी। पिछले वर्ष जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस 6 वर्षीय पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 11 अक्टूबर को की थी। इस योजना के तहत जिलों की विशेष कृषि आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ ही राज्यों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 4,900 करोड़ रुपए की लागत से बनी चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना की मेट्रो रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो ट्रेन में यात्रा भी करेंगे। पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में उन्नत सिग्नलिंग प्रणालियों के साथ एक विशिष्ट 3.7 किलोमीटर लंबी डबल डेकर संरचना है जो चालक रहित संचालन के लिए तैयार की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित किए गए पलानी वेल्लोर छावनी अम्बा समुद्रम परमकुडी और नमक्कल स्थित 5 अमृत स्टेशनों सहित 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा भी करेंगे। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तख्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हॉल में घुस गए और नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। सुबह 6 बजे से नई दिल्ली की ओर जाने वाली शंकर रोड, वंदे मातरम, टी पॉइंट, गोल चक्कर, झंडेवाला, पचकुइया मार्ग, गोल टाक खाना, पटेल चौक, मंडी हाउस, भैरो रोड, रिंग रोड, टी पॉइंट और लोदी रोड फ्लाईओवर सहित विभिन्न रास्तों पर आवाजाही प्रभावित हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके की दादी के निधन और उनके अंतिम संस्कार के समय की जानकारी तुरंत उनके साथ साझा की गई थी। मानवीय आधार पर दिपके को और उनके गृह नगर जाने के लिए हर संभव सहायता और सुविधा की पेशकश भी की गई थी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 क्रिकेट मैच खेलेगा। होलकर स्टेडियम में यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। शुक्रवार को रांची में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज की भारत पर 6 विकेट से जीत के बाद 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रोशनी तेज करो, रोशनी तेज करो चांद सितारों अपनी, रोशनी तेज करो चांद सितारों अपनी, मुझको मंजिल पे पहुंचना है सहर होने तक, मुझको मंजिल पे पहुंचना है सहर होने तक। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की ये खूबसूरत सी महफिल, और आपके साथ हूँ मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में आज जो पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, फिल्म का नाम है आराधना, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

सुन रहे हैं गीत सुहाने और आपके साथ हूं मैं जयती। एक पुराना खत मिला, एक पुराना खत मिला कपड़ों के नीचे किसी संदूक की तह में, जैसे बीते बरसों ने अपनी कोई सांस छिपा रखी हो। स्याही फीकी थी पर संबोधन में वही गर्माहट थी, स्याही फीकी थी पर संबोधन में वही गर्माहट थी। अक्षर थोड़े कांपते हुए, फिर भी पहचानने में एक पल भी नहीं लगा। उस पन्ने पर किसी ने प्रेम लिखा था, उस पन्ने पर किसी ने प्रेम लिखा था, किसी ने घर का हाल, किसी ने लौट आने की आस, और किसी ने बस इतना अपना ख्याल रखना, किसी ने बस इतना अपना ख्याल रखना। कितना छोटा वाक्य था और उसमें कितना बड़ा संसार। बाहर की दुनिया उंगलियों की गति से आगे निकल गई, संदेश क्षण भर में दूर देश तक पहुंचने लगे, मगर इस कागज ने आज भी अपनी धीमी चाल नहीं छोड़ी। वह आज भी शब्दों के बीच चेहरा संभाले हुए है, एक आवाज, एक आवाज, एक मौसम, एक ऐसा अपनापन जिसे किसी स्क्रीन पर नहीं उतारा जा सकता। मैंने खत फिर तह किया, मैंने खत फिर तह किया, इस बार संदूक में रखने के लिए नहीं, अपने समय से बचा कर रखने के लिए, अपने समय से बचा कर रखने के लिए। और अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है द ट्रेन।

कांस खिला तो खेतों ने चांदी का आंचल ओढ़ लिया। कांस खिला तो खेतों ने चांदी का आंचल ओढ़ लिया। हवा चली तो फूलों ने जैसे कोई गीत छेड़ दिया। भादों की भीगी देह से शरद की आहट आई। भादों की भीगी देह से शरद की आहट आई। दूर नदी के किनारे सफेद लहर मुस्कुराई और ऋतु ने धीरे से कहा अब धूप में मिठास आएगी, और अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है इश्क पर जोर नहीं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. और गीत सुहाने में आगे जो हम बातें करेंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि थोड़ी देर पहले हम खतों की बात कर रहे थे और लिखने की बात कर रहे थे. तो कहते हैं कि शब्दों को हम जितनी खूबसूरती से अपने जीवन में इस्तेमाल करते चले जाते हैं, कागज़ पर उतारते चले जाते हैं, हमारे शब्द जो होते हैं वो उतने ही समृद्ध होते जाते हैं, क्योंकि हम शब्दों में नित नए प्रयोग करने लगते हैं. इसलिए शब्दों से जुड़ना सबसे सुंदर कार्य है और हर व्यक्ति को शब्दों के साथ नित नए प्रयोग जरूर करने चाहिए. सुंदर सुंदर शब्दों से रचिए, जीवन की कहानी को रचने की कोशिश करिए, कुछ लिखने की कोशिश करिए और फिर देखिए कि एक सुंदर सी रचनात्मक कृति आपके सामने होगी, शब्दों के प्रयोग वाली. कहते हैं कि कांस के कोमल फूलों पर शरद का पहला स्पर्श, कांस के कोमल फूलों पर शरद का पहला स्पर्श, धरती के माथे पर जैसे चांदी का सुंदर हर्ष, हवा इन्हें छूकर निकले तो लहरें बनती जाए, हवा इन्हें छूकर निकले तो लहरें बनती जाए, सूने से पथ पर भी उम्मीदें खिलती जाए. ऋतु बदलने का यह पल कितना सुंदर लगता है, ऋतु बदलने का यह पल कितना सुंदर लगता है. और अगला गीत, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त और आवाज है मोहम्मद रफी की.

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आज गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है लव स्टोरी। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

रात ढली तो पारिजात ने, रात ढली तो पारिजात ने आंगन भर दिया फूलों से, रात ढली तो पारिजात ने आंगन भर दिया फूलों से, जैसे नभ ने चुपके से तारे भेजे हों धूलों से। केसरिया डंठल वाले सफेद फूल कितने प्यारे लगते हैं, केसरिया डंठल वाले सफेद फूल कितने प्यारे लगते हैं, ओस में भीगे लगते हैं, धरती के सपनों से न्यारे लगते हैं। भोर हुई तो शाखें खाली, भोर हुई तो शाखें खाली, आंगन फूलों से भराया, रात ने जाते जाते जैसे सुगंध का संदेशा दे दिया, रात ने जाते जाते जैसे सुगंध का संदेशा दे दिया, रात ढली तो पारिजात ने आंगन भर दिया फूलों से, आंगन भर दिया फूलों से। और अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है गाइड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 4,900 करोड़ रुपए की लागत से बनी चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना की मेट्रो रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो ट्रेन में भी यात्रा करेंगे। पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर उन्नत सिग्नलिंग प्रणालियों के साथ 3.7 किलोमीटर लंबी डबल डेकर चालक रहित संचालन वाली संरचना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित किए गए पलानी वेल्लोर छावनी अम्बा समुद्रम परमगुडी और नमक्कल स्थित 5 अमृत स्टेशनों सहित 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है। देश भर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले साल आज ही के दिन यह योजना शुरू की गई थी। पिछले वर्ष जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस 6 वर्षीय पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 11 अक्टूबर को की थी। इस योजना के तहत जिलों की विशेष कृषि आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ ही राज्यों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने कहा है कि संयुक्त

0: राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की दिल्ली में आज की घटनाओं को लेकर चिंताएं बेबुनियाद और देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी भेदभाव के अपने जनादेश के अनुरूप अन्य स्थानों पर हो रहे बड़े पैमानों के विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। मिशन ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के अधिकार की गारंटी संविधान प्रदत्त है और मजबूत संस्थाओं, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा स्वतंत्र मीडिया द्वारा इसकी सुरक्षा की जाती है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सीजीपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। सेना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास 5 बारूदी सुरंगों को खोजकर सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है। घुसपैठ रोधी प्रणाली के हिस्से के रूप में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम क्षेत्रों में बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं, लेकिन भारी बारिश के कारण कभी कभी ये प्रणाली बहकर उन स्थानों पर आ जाती है जहां इनसे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। होलकर स्टेडियम यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। शुक्रवार को रांची में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज की भारत पर 6 विकेट से जीत के बाद 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has called for reform of the UN Security Council, saying India and Africa cannot remain underrepresented in global decision-making. Addressing a gathering at the Adwa Victory Memorial Museum in Ethiopian capital Addis Ababa, Dr. Jaishankar called for fair African representation in both permanent and non-permanent membership and recalled India's efforts during its 2023 G20 presidency to secure permanent membership for the African Union.
2: India and Africa cannot remain unrepresented in global decision making. And that is why India worked resolutely during its G20 presidency in 2023 to secure a permanent membership for the African Union. This decade has seen the UN slide steadily into irrelevance, helpless in the face of major challenges. Our objective is not merely to add more seats around an old table. It is to make global governance more democratic, more responsive, and more representative. And in doing so, make the United Nations itself more capable and more credible.
1: On the final leg of his 3-nation African tour, Dr. Jaishankar urged Indian businesses to invest in the continent and called for stronger cooperation in food security, agriculture and sustainable development. India has said the proposed interim trade agreement with the United States will be finalized in light of changing circumstances. Addressing members of Industry Chamber, PhD Chambers of Commerce and Industry in New Delhi, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the framework announced in February is being reassessed amid changes in the US tariff landscape. He added that India is seeking more favorable tariff terms to ensure its goods remain competitive in the American market. Mr. Goyal said India is simultaneously pursuing trade agreements with several partners, including Israel, Chile, the Gulf Cooperation Council, and the Eurasian Economic Union. Several protesters who attempted to reach the protest site at Jantar Mantar in New Delhi were detained by Delhi police. On 9th October, Delhi police had denied permission for the protest called by CJP. Those who have been detained are gradually being released. In view of the protest called by CJP against the Election Commission, heavy security arrangements are put in place across the national capital. Along with Delhi police officers,

आप सुन रहे हैं रात सुरमई और आपके साथ हूं मैं जयती। रात का वक्त है तो क्यों ना कुछ बातें रात की कर ले, या यूं कहें कि रात से कुछ बातें कर ले। रात से पूछिए तो वो दिन का हिसाब नहीं मांगती, रात से पूछिए तो वो दिन का हिसाब नहीं मांगती, वो बस अगली सुबह तक थोड़ा समय देती है। जो अच्छा रहा उसे दिल में रखिए, जो बिगड़ गया उसे हर पल दोहराने की जरूरत नहीं। कुछ फैसले सुबह की रोशनी में बेहतर समझ आते हैं, कुछ फैसले सुबह की रोशनी में बेहतर समझ आते हैं, इसलिए हर सवाल का जवाब इसी वक्त जरूरी नहीं। आज बस अपने मन को आराम दीजिए, कोई प्यारा गीत सुनिए और आने वाले कल के लिए थोड़ी जगह बचाकर जरूर रख लीजिए, क्योंकि जिंदगी हर सुबह एक नया पन्ना लेकर आती है और शायद अगली सुबह की कहानी आज की रात से ही शुरू हो रही हो। और अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है द ट्रेन।

बातें हो रही थी रात की, क्योंकि वक्त है रात का, तो रात से कुछ बातचीत हो रही थी। रात ने कहा कि जब घर की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं, जब घर की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं, तब भी कुछ लोग अपने काम में लगे रहते हैं। कोई किताब के पन्ने पलट रहा है, कोई अगली सुबह की तैयारी कर रहा है, कोई अपनी कला के साथ बैठा है, तो कोई बस रेडियो सुन रहा है। रात की यही दुनिया सबसे दिलचस्प दुनिया है। ये उन लोगों को भी एक जगह ला देती है जो एक दूसरे से बिल्कुल अनजान है। शायद इस वक्त कहीं किसी और कमरे में कोई बिल्कुल वही गीत सुन रहा हो जो आपको पसंद हो, और यही ख्याल रात को थोड़ा और अपना बना देता है। यही ख्याल रात को थोड़ा और अपना बना देता है। और अब जो अगला गीत आप सुनेंगे, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है इंतकाम।

सफर मंजिल के लिए नहीं, रास्ते के अनुभव के लिए भी किए जाते हैं। और रात का जो सफर होता है ना, वो ऐसा ही होता है। सड़क के किनारे सोए हुए कस्बे, दूर तक जाती हुई रोशनी और शीशे तक आती ठंडी हवा, सब मिलकर रात के संसार को एक अलग रंग में रंग देते हैं। ऐसे सफर में कोई गीत मिल जाए तो रास्ता और भी अपना लगने लगता है। और आज अगर आप भी किसी सफर में हैं तो ये जो आवाज है एफएम गोल्ड की, इसको अपना साथी समझिए और मंजिल तक हम आपके साथ ही रहेंगे कुछ गीतों और कुछ खूबसूरत बातों के साथ। तो अगला गीत जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, फिल्म का नाम है सागर और आवाज है किशोर कुमार की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है शागिर्द और आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

रात की स्याही में शहर अपना नाम लिख रहा है। रात की स्याही में शहर अपना नाम लिख रहा है। दिन भर का किस्सा अब धीरे धीरे मिट रहा है। दुकानों के आधे गिरे शटर, सुनसान से रस्ते और दूर जाती गाड़ी के धुंधले से उजाले। इस पहर की अपनी ही एक तहजीब है। हर आवाज यहाँ कुछ धीमी और करीब है। तो आइए इस नर्म लय में कुछ पल और बिताते हैं और जो गीत रात चुनकर लाई है उसे साथ सुनते हैं। मैं हूँ जयती और ये रात अभी थोड़ी और हमारी है। और अगला गीत फिल्म जाबाज से।

चांद ने फेर ली नजर अपनी, चांद ने फेर ली नजर अपनी, अब मेरे रत जगों का क्या होगा, अब मेरे रत जगों का क्या होगा। वक्त आ चला है, आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो फिर मिलने के वादे के साथ जयति चाहेगी अनुमति, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है अवतार, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 4,900 करोड़ रुपए की लागत से बनी चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना की मेट्रो रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो ट्रेन में यात्रा भी करेंगे। पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर उन्नत सिग्नलिंग प्रणालियों के साथ 3.7 किलोमीटर लंबी डबल डेकर चालक रहित संचालन वाली संरचना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित किए गए पलानी, वेल्लोर छावनी, अंबा समुद्रम, परमकुडी और नमक्कल स्थित 5 अमृत स्टेशनों सहित 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंड शेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन और पूजा भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है। देशभर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले साल आज ही के दिन यह योजना शुरू की गई थी। पिछले वर्ष जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस 6 वर्षीय पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 11 अक्टूबर को की थी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की दिल्ली में आज की घटनाओं को लेकर चिंताएं बेबुनियाद और देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी भेदभाव के अपने जनादेश के अनुरूप अन्य स्थानों पर हो रहे बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। मिशन ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के अधिकार की गारंटी संविधान प्रदत्त है और मजबूत संस्थाओं, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा स्वतंत्र मीडिया द्वारा इसकी सुरक्षा की जाती है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे

0: कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तख्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। फिटनेस, युवा सशक्तिकरण और नशा मुक्त भारत के संदेश को सुदृढ़ करने के लिए 94वां फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल आज वाराणसी में सुबह 6 बजे से नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षा मंडप तक के मार्ग पर आयोजित किया जाएगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 क्रिकेट मैच खेलेगा। होलकर स्टेडियम में यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। शुक्रवार को रांची में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज की भारत पर 6 विकेट से जीत के बाद 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Prime Minister Narendra Modi will inaugurate projects worth ₹13,000 crore at Chennai today. On arrival by a special IAF aircraft, Prime Minister will flag off the metro rail service of the Chennai Metro Rail project, built at a cost of around ₹4,900 crore. He will also travel in the metro train along with Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay. The Poonamalli-Porur corridor features a unique 3.7-kilometre double-decker structure with advanced signalling systems designed to support driverless operations. The Prime Minister will undertake a ride on the Chennai Metro from Porur bypass station to Poonamalli bypass station and back. The Prime Minister will dedicate and inaugurate railway infrastructure projects worth over ₹750 crore, including 5 Amrit stations at Palani, Vellore Cantonment, Amba Samudram, Parmakudi and Namakkal, which have been redeveloped under the Amrit Bharat Station Scheme. Mr. Modi will perform Darshan and Puja at the Jalkandeshwar Temple near the Porur Lake. Defence Minister Rajnath Singh has emphasised the need to consider the aspirations, needs and changing circumstances of young people while formulating policies for them. Addressing the Narendra Mohan lecture in New Delhi yesterday, Mr. Singh said that the government is moving beyond the concept of policy for youth towards policy by youth and policy with youth in keeping with the changing needs of the times. He said that in a democracy, expressing dissent is a right, but spreading anarchy will not be accepted. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired a conference of India's heads of mission in Africa in Addis Ababa yesterday, saying India and Africa share deep linkages built upon Global South solidarity, strategic autonomy, multipolarity and common development aspirations. The conference came a day after Dr. Jaishankar laid out his vision for the India-Africa partnership in an address in the Ethiopian capital. The minister said partnerships of the future must help create capabilities, not promote dependencies, and called for a reformed UN Security Council with fair representation for Africa while speaking on the India-Africa partnership at the Adwa Memorial Museum in Addis Ababa. Several protesters who attempted to reach the protest site at Jantar Mantar in New Delhi were detained by Delhi police. On 9th October, Delhi police had denied permission for the protest called by CJP. Those who have been detained are gradually being released. In view of the protest called by CJP against the Election Commission, heavy security arrangements are put in place across the national capital. Along with Delhi police officers and personnel, paramilitary personnel have been deployed to prevent any breach of law and order. Delhi police had denied permission for the demonstration, citing the prevailing law and order situation and prohibitory orders in New Delhi district.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:10 हो चुके हैं और अब हमेशा की तरह समय है उसी कार्यक्रम का जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, उसका नाम है हमराही और आज हूँ मैं आपके साथ इस प्रोग्राम में, आपका दोस्त अर्चित। तो बातें तो कुछ होंगी ही, पर उससे पहले शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। जुड़े रहिए इसी तरह लगातार आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, जिंदगी इत्तेफाक है। और शायद ये सच भी है कि जिंदगी इत्तेफाक ही है, क्योंकि हर चीज जो हम सोचते हैं ठीक वैसी ही नहीं होती, कुछ चीजें इत्तेफाक से अपने आप ही हो जाती हैं। हासिल है दुनिया की दौलत तुम्हें, हासिल है दुनिया की दौलत तुम्हें, साथ तुम्हारे हजारों का मेला। हासिल है दुनिया की दौलत तुम्हें, साथ तुम्हारे हजारों का मेला। खाली करके खजाना अपना, मिलो कभी जाकर सबसे। खाली करके खजाना अपना, मिलो कभी जाकर सबसे। दुनिया की भीड़ में खुद को पाओगे अकेला। तीन बजकर 19 मिनट हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

वहां का जर्रा जर्रा अपनी हालत पर सलामत है। तुम्हारे एक न होने से वहां लेकिन कयामत है।

करते हैं जब तुमको याद तो खुद को ही भूल जाते हैं, करते हैं जब तुमको याद तो खुद को ही भूल जाते हैं, आती है फिर जब अपनी याद तो उसमें भी तुमको ही पाते हैं। यादों का ये दरिया है या है समंदर, यादों का ये दरिया है या है समंदर, एक बार जो फंसे तो और फंसते चले जाते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, मेरे यानी अर्चित के साथ। एक और बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग जिसके बोल है, दिल ने दिल को पुकारा।

अब तो रातें ही अच्छी लगती हैं जब से निकले हैं सुकून की तलाश में। अब तो रातें ही अच्छी लगती हैं जब से निकले हैं सुकून की तलाश में। कई दिनों में भी वो चैन नहीं मिलता, कई दिनों में भी वो चैन नहीं मिलता जो मिल जाता है बस एक रात में। यूं तो हर रात हम तन्हा ही होते हैं, यूं तो हर रात हम तन्हा ही होते हैं। तन्हाइयों का अपना ही मजा है जो अब नहीं आता हर किसी के साथ में। तीन बजकर 33 मिनट हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत।

हमारे बारे में ही सोचते हैं। हम सोचते हैं कि वो दिन भर हमारे बारे में ही सोचते हैं, जबकि उन्हें तो हमारा ख्याल भी नहीं। खुद ही याद दिलानी पड़ती है उन्हें, खुद ही बताकर खुद की याद दिलानी पड़ती है उन्हें, खुद ही बताकर खुद से उन्हें मेरी याद आ जाए सवाल ही नहीं। पड़ती है जब जरूरत तो याद आ जाते हैं हम उन्हें, पड़ती है जब जरूरत तो याद आ जाते हैं हम उन्हें, वरना हम उनके लिए इतने भी खास नहीं। तीन बजकर 44 मिनट हो चुके हैं, इसी तरह सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

बंदिशें तो हजारों महसूस होंगी, पढ़ोगे जब किसी रिश्ते में। बंदिशें तो हजारों महसूस होंगी, पढ़ोगे जब किसी किसी रिश्ते में। घुटन भी कई बार लगेगी, निभाओगे जब किसी रिश्ते में। फिर भी बचा कर रखना हर उस रिश्ते को, फिर भी बचा कर रखना हर उस रिश्ते को, क्योंकि तन्हा और आवारगी में जीना बहुत दिन तक अच्छा नहीं लगता।

3:53 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमराही। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 4,900 करोड़ रुपए की लागत से बनी चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना की मेट्रो रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो ट्रेन में यात्रा भी करेंगे। पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर उन्नत सिग्नलिंग प्रणालियों के साथ 3.7 किलोमीटर लंबी डबल डेकर चालक रहित संचालन वाली संरचना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित किए गए पलानी वेल्लोर छावनी अम्बा समुद्रम परमकुडी और नमक्कल स्थित 5 अमृत स्टेशनों सहित 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है। देश भर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले साल आज ही के दिन यह योजना शुरू की गई थी। पिछले वर्ष जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस 6 वर्षीय पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 11 अक्टूबर को की थी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदिस अबाबा में डॉ जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्यूटली।
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की दिल्ली में आज की घटनाओं को लेकर चिंताएं बेबुनियाद और देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी भेदभाव के अपने जनादेश के अनुरूप अन्य स्थानों पर हो रहे बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने CJP को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तख्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और नारे लगाए। उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी रेलगाड़ियां अपनी सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन की घोषणा

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 4:10 हो चुके हैं और ये समय रहता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है अरुणिमा।

कुछ गलत काम करने से लाख गुना बेहतर है कुछ भी ना करना। कुछ गलत काम करने से लाख गुना बेहतर है कुछ भी ना करना, क्योंकि गलती से की गई गलतियां तो सुधारी जा सकती हैं, पर जान कर किए गए गलत कामों को सुधारना अक्सर मुश्किल होता है। आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी अर्चित के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का यह प्रोग्राम जिसका नाम है अरुणिमा।

0: आजादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाय बाय।
1: सुनो तो, सुनो ना, सुनो तो।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा,

0: wyskradaj. Pelezerna, a wyskradaj. Pelezerna, a
1: सिर्फ भागने से ही अगर मिल जाती मंजिलें, सिर्फ भागने से ही अगर मिल जाती मंजिलें, तो भाग तो पूरी दुनिया ही रही है। हासिल ए मंजिल यहाँ उसी को होती है, हासिल ए मंजिल यहाँ पर उसी को होती है जिसकी दिशा भी सही होती है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही जरूरी है।

जरूरी नहीं होता सही दिशा में मेहनत करना, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। 4:19 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अपने दोस्त, अपने प्यारे से दोस्त अर्चित के साथ।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, जिसके बोल थे ये अलबेली प्यार की राहें। सहूलियत के हिसाब से ही आजकल लोग चलाते हैं ये रिश्ते, सहूलियत के हिसाब से ही आजकल लोग चलाते हैं ये रिश्ते, जरूरत के हिसाब से ही निभाते हैं आजकल लोग ये रिश्ते, बिना मतलब के रिश्ते निभाने वालों को जरा संभाल कर रखिएगा, बिना मतलब के रिश्ते निभाने वालों को जरा संभाल कर रखिएगा, क्योंकि मतलब पूरा होते ही अक्सर लोग खत्म कर जाते हैं ये रिश्ते। 4:25 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा FM गोल्ड पर।

करते रहिए कोशिशें हजारों, एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होता। करते रहिए कोशिशें हजारों, एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होता। लगातार प्रयास करते रहने से एक ना एक दिन जरूर है हासिल होता। पर हासिल हो जाए जब कुछ भी तो उस पर घमंड मत करना। पर हासिल हो जब कुछ भी तो उस पर घमंड मत करना, क्योंकि ये घमंड ही है जो तुमसे सब कुछ है वापस ले लेता। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 4:33 हो चुके हैं और प्रोग्राम चल रहा है आपका पसंदीदा, जिसका नाम है अरुणिमा, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अलचेत।

4:44 हो चुके हैं, यूं तो अब सपनों से जागने का समय हो ही गया है। ना समझ ही रहने दीजिए अब हमें, ना समझ ही रहने दीजिए अब हमें, इतना समझदार होकर भी क्या करना है। समझदारी के इस दौर में समझ में ही नहीं आता है कुछ भी, समझदारी के इस दौर में समझ में ही नहीं आता है कुछ, इससे तो हम ना समझ ही अच्छे हैं। इसी गानों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत।

बनी रहने दीजिए कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही सही, बनी रहने दीजिए कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही सही, सारी पूरी हो जाएं ये जरूरी तो नहीं। सुकून ए जिंदगी पर ही ध्यान दीजिए सारा, सुकून ए जिंदगी पर ही ध्यान दीजिए सारा, क्योंकि ख्वाहिशों का तो कोई अंत नहीं। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

4:58 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। चेन्नई पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल को रवाना करेंगे। वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो ट्रेन में भी यात्रा करेंगे। पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में 3,700 मीटर लंबा डबल डेकर ढांचा बनाया गया है। इसमें आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली है जो परिचालन को सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई है। प्रधानमंत्री पोरूर बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन तक मेट्रो में यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बा समुद्रम, परमकुड़ी और नमक्कल शामिल है। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारें की योजनाएं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की दिल्ली में हुई घटनाओं को लेकर चिंताएं बेबुनियाद और देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी भेदभाव के अपने जनादेश के अनुरूप अन्य स्थानों पर हो रहे बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। फिटनेस, युवा सशक्तिकरण और नशा मुक्त भारत के संदेश को सुदृढ़ करते हुए 94वां फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल आज वाराणसी में सुबह 6 बजे से नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर केंद्रित इस पहल में युवा, आम लोग और खेल जगत की हस्तियां शामिल होंगी। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय साइकिलिंग महासंघ, राहगीरी फाउंडेशन और माई भारत के सहयोग से किया जा रहा है। उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी ट्रेनें अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। रेलवे ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया था। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। और खेलों में भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। शुक्रवार को रांची में खेले गए दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 5:10 हो चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम भोर सुहानी का।

कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है, जिसमें एक बार फिर से मैं हूं आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जिसके बोल हैं दीवाना करके छोड़ोगे।

0: आंवला विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का पावर हाउस है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा व बालों को स्वस्थ रखता है। प्रतिदिन आंवले का सेवन आपको स्वस्थ बनाए रखता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: यूं तो जागने का कोई समय नहीं होता है, जब जागो तभी सवेरा होता है, पर अगर सूरज की पहली किरण के साथ जागा जाए तो वो सवेरा बाकी से बेहतर ही होता है। 5:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: मिलेट्स प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो कि गेहूं का एक उत्तम पौष्टिक एवं फाइबर युक्त विकल्प है। मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि ग्लूटेन फ्री अनाज है, जिनका उपयोग रोटी, दलिया और खिचड़ी आदि बनाने में किया जा सकता है।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।